0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है। महाराज जी, मैं क्या करूँ? महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन।
2: किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो, भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भैया, हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। यही यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है, दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो, भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राज पत्नी पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए, हिरण की स्मृति में मरे, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवत स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवत स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे हैं। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं, पर एक प्रधान हो गई है इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगी पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और वो ना हुआ तो सर्वनाश ही हो गया। हम कहीं ना कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब आसक्ति हैं। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा कर, इसका नाम ही आसक्ति, सर जा नहीं सकती, बहुत मजबूत है आसक्ति। कहीं से भी किसी में भी आसक्ति हो जाएगी, अरे तमाखू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। नहीं, हमने तो किसान को देखा है कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, उसे तो अरे भैया थोड़ी तमाखू देना, वहां से तमाखू फिर लेके आधा किलोमीटर लौट के आता। एक तमाखू की आसक्त, बीड़ी की आसक्त, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई है। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति की वो नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु कुछ भी हो, यहां जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हो, आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा लिए। हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जा सकते। ये है माया का चक्कर कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो, ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी क्योंकि उसका पानी निकलने। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की तरफ। नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी। एक धनुर्दास जी नाम के महापुरुष हुए हैं, वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, बहुत सुंदर पत्नी थी और इतना आसक्त थे कि अब जैसे बाजार जाना है सामान लाने, सब्जी हो या वो, नहीं जाते थे। हाँ, अब पत्नी जाएगी तो वो छाता लेके चलते थे कि धूप ना लग जाए, और बैग चलते थे, पत्नी ऐसे चल रही तो छाता लिए ऐसे, मतलब आसक्ति है। ये बात जब आचार्य चरण के शिष्यों ने देखी तो जाके बताया कि प्रभु एक ऐसा स्त्री में का प्रेमी देखा, पूरी से तो उनका ये तो बहुत बड़ी साधना उसकी हो गई, क्योंकि आसक्ति सब जगह से समिट चुकी है, उसका मोड़ करना है, हम तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम इतना आसक्त क्यों हो, तो उनका ऐसा सुंदर हमारी पत्नी है प्रभु, हम जी नहीं सकते इसके। बोले अगर इससे सुंदर दिखा दें रूप, बोले हो ही नहीं सकता, जो स्पर्श किया तो ठाकुर रंगनाथ जी सामने छाता छूट गया, पतली छूट गई, बड़े महापुरुष हुए धनुर्दास नाम के वहां पर। हाँ, कहीं ना कहीं जीव की आसक्ति हो जाती है, स्वाभाविक है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है, और वो आसक्ति भगवान से जुड़ने पर ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। बहुत पावरफुल माया है, बहुत पावरफुल, और बहुत दुर्दशा होती है। देखो सबके हृदय में एक प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप है, जीव भगवान का अंश है, तो उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। पशु पक्षी वस्तु स्थान पद, कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा फैल गया गलत जगह, और वो लौट कर हम जैसा प्यार करते हैं वैसा नहीं मिलता कहीं से भी आप देख लो, तो वो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लौट कर प्यार अगर वैसा दे सकता है कोई, तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हम चैतन्य भगवान के अंश हैं, वो हमको चैतन्य भगवान से ही प्यार मिल पाएगा, प्रकृति हमें प्यार नहीं कर पाएगी। हम प्यार किसी से करते हैं तो प्रकृति से करते हैं, शरीरों से, इससे अच्छा उसका भी मन है। हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे, देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे, और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले, ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि में, नहीं कर, उसका मन है, उसका भी स्वभाव है, ये बात भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली। भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अनुकूल नहीं, आपके मन को चुरा लेते हैं, नहीं ले लेते, अब मन ही नहीं रहा तब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, अपने आप आलल। तो हमें लगता है बच्चा भगवान का नाम लो, उनके आश्रित हो, वही नहीं तो फिर यहां की आसक्ति तो नष्ट कर देती है। जब ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हिंसा में उतर जाती है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि वासना हावी हो जाती है और उसका नाश कर देती है। क्यों, अब देखो ना संसार में देखो ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैटर तो बहुत सीरियस है आसक्ति का। भगवान कपिल देव जी ने कहा संसार में जो आसक्ति की जाती है वो दुर्गति का कारण होती है, वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुदेव भगवान पर कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर बड़ा कठिन है, संतों से कौन आसक्ति करे, भगवान से क्यों आसक्ति करे, और जबकि वास्तविक आसक्ति भगवान से ही होती है। देखो जैसे हम किसी भी शरीर को प्यार करते हैं, अगर उसके शरीर के अंदर से भगवान चले जाए तो भला कितने मिनट हम प्यार कर पाएंगे, फिर हम उस शरीर को जला देते हैं ना, तो अनजाने में भी प्यार हम भगवान से ही करते हैं। अब हम जानकर भगवान से प्यार करें तो अन्य शरीरों की आसक्तियां मिट जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो हमारी आसक्ति फैल गई उसे समेटना बहुत कठिन है। अब इसीलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जैसे रस्सी आती जाती है तो सिल पर भी निशान बन जाता है, ऐसे नाम जपते हुए भजन करते हुए हमारे जो आसक्ति हृदय में संसार की बन गई, वो अगर भगवान की आसक्ति आ जाए तो सब काम बन जाए। देखो तुलसीदास जी के पावन चरित्र में देखो ना, पत्नी से वो भी आसक्त थे, कभी मायके नहीं जाने देते थे, मतलब काम भाव होना एक अलग बात होती है, आसक्ति होना एक अलग भाव, प्रियता होना अलग बात। अब वो किसी के यहां गए थे, इतने में भाई आया और वो अपने मायके, तो पूरा चरित्र वर्णन है उनके बावरेपन का, कैसी प्रीति का। तब उन्होंने कहा पत्नी ने कि जितना तुम इस चाम से प्रेम करते हो अगर उतना राम से करते, बस कदम वापस कर लिए, वाह जीवन, इतने बड़े महापुरुष हुए, मैं पूछूं मत। जैसे बिलो मंगल जी की आसक्ति चिंतामणि वैश्या से थी, जब कठोर वचन बोले चल पड़े भगवान, इतने बड़े महापुरुष हुए, पर जब उन्होंने ग्रंथ रचना की ना तो उन्होंने सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है कि तू मेरी गुरु, अगर तूने कटु वचन बोलकर भगवान की तरफ न बढ़ाया होता तो आज मैं इस स्थिति में ना होता। तो संसार की आसक्ति से बचने के लिए या संसार की आसक्ति का ठोकर खाया हुआ एक स्थान है भगवान। अगर भगवान में आसक्ति कर लो तो बच सकते हो, नहीं हो तो जलाती रहेगी आसक्ति, बहुत ही कष्टप्रद आसक्ति होती है। और ये माया का खेल है कि हम आपसे प्यार करेंगे तो आप हमसे वैसा प्यार नहीं करेंगे, आप इधर देखेंगे और ये बात जब हम देखेंगे तब तो हमारे हृदय में आग लगेगी, जलेगा, यही दुर्दशा माया करती है।
1: वही लिखा कर रहे हैं, उसने मेरे को धोखा दिया।
2: तो हम भाई वो तो बता रहे हैं आपको, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, माया का जो खेल है ना तो वही है भाई। इसलिए जहां से धोखा नहीं मिलेगा वो एक स्थान है भगवान।
1: महर्षि आप कह रहे हैं कि प्रभु में आसक्ति हो जाए तो उसका प्रारंभिक प्रारंभ का
2: नाम जप और सत्संग। नाम जप सत्संग करे तो इससे धीरे धीरे हृदय निर्मल होने लगता है। बड़े बड़े मतलब ये क्या आसक्त है, बड़े बड़े आसक्तों को भगवान ने अपना प्रेमी बना लिया। तो इसलिए हमें एक ही उपाय लगता है, भगवान का आश्रय ले ले, वो करुणामय हो, नाम जप करे राधा राधा राधा राधा राधा, तो प्रिया जो बहुत करुणामय कृपा करेंगी, आसक्ति हट जाएगी। नहीं तो बताया नहीं कि आसक्ति का बड़ा प्रबल स्वरूप है। तो बुद्धि को शुद्ध करो, गलत दिशा में जा रही, गलत जगह आसक्ति कर ली है। तो हमारा ये अधिकार थोड़ी हम किसी को चाहें और किसी को पालें, इतना अधिकार थोड़ी है कि हम जो चाहें वही पालें, ऐसा नहीं। कुछ प्रारब्ध भी तो है, आपकी चाह के अनुसार आपका तप भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नाम जप करो और यथालाभ संतोष सदा, तो भाई बच सकते हो, नहीं फिर आगे का जो रास्ता है वो बड़ा भयावह है। अब ऐसे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिंतन बिगड़ जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, न माता पिता की सेवा, न राष्ट्र की सेवा और न भगवान का, जीवन बर्बाद कर देगा। आसक्ति बर्बाद कर देगा पक्का, समझ लो वो अंदर खोखला करता चला जाएगा। आसक्ति है, खोखला करते चले जाए और आपको वो माया मिलने नहीं देगी। बड़ा विचित्र खेल है, इसलिए बहुत संभल के नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। बड़ा भयावह संसार, बड़ा भयावह है, सामने वाले की स्थिति क्या है। तो हमें लगता है थोड़ा अपने प्यार को कंट्रोल में करे, शासन में ले अपनी वृत्ति को। ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ कभी ऐसा संयोग होगा तो आगे तुम्हारा जिससे संयोग होगा भगवान दे देंगे। आसक्ति थोड़ा बचा के करे, ऐसा नहीं कि चित्त को ऐसे खुला बाजार में फेंक दे। ये संसार बाजार है, तुम्हारे मन के अनुसार कोई नहीं चलेगा, बहुत सावधान रहो। क्यों बच्चा? हाँ नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, आसक्ति से नहीं बनेगा, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। जैसे अभी तुम्हारा चेहरा है ना, ये बहुत उदास चेहरा है, ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो डिप्रेशन आ जाएगा, ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ, इसलिए ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो, कोई बात नहीं है, तुमसे गलती हो गई, उसको स्वतंत्र जीने दो अपना, जहां जिसका भाव। कोई अधिकार थोड़ी हमारा किसी पे, ए भाई किसी पे अधिकार थोड़ी। तो आप दूसरा रास्ता चयन करो, भगवान का आश्रय लो, उनको जहां ऐसा कुछ ब्याह आदि संयोग कराना होगा वो करा देंगे। और जियो, धैर्य से जीना सीखो, तुम तो मरने का रास्ता तय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अभी ऐसा चिंतन फंसा दोगे तो क्या होगा? हमको तो डर लग रहा है सोच के कि अगर ऐसी आसक्ति, जैसे आपकी स्थिति है ना, अब ऐसी आसक्ति आपको खोखला कर देगी, आपके जीवन की हानि कर देगी। ऐसे नहीं बैठा जाता, अरे छल कपट संसार में हो रहा है, तुम क्या सोचते हो सब प्यार करते? पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, आचार्य चरण कहते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है कि तुम्हारे प्यार को समझ पाएगा बच्चा, कोई बिरला, क्योंकि प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते,

0: तो भगवान का भरोसा करो, उसका भाव छोड़ दो और नाम जप करो, राधा राधा राधा राधा, ठीक है, नाम जप जी।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं, उनकी आंखों में है प्रेम और शोक।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

0: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395651 या 97076575।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।

0: पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902। नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत

नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कई शराब तस्करों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने किया गिरफ्तार। विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सर्पदंश से एक महिला की हो गई मौत। 13,000 लीटर से अधिक शराब को किया गया नष्ट। और हत्या के प्रयास में भी कई आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शराब तस्करों के विरुद्ध भी लगातार उत्पाद पुलिस और स्थानीय पुलिस छापेमारी कर रही है। आए दिन शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी कड़ी में विशेष अभियान के तहत फुलवरिया थाना की पुलिस ने ग्राम भगवत परसा स्कूल के पास वाहन जांच करते हुए एक मोटरसाइकिल से 21 लीटर से अधिक देशी शराब को जब्त किया। इसमें एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने पकड़ा है। शराब और स्कूटी को जब्त करते हुए आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी जलालपुर कुर्म टोला के पास छापेमारी करते हुए अजय राय को शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 63 लीटर से अधिक देशी शराब मिली है इसके पास से, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर और इसकी मोटरसाइकिल को भी जब्त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि अजय राय जादोपुर का रहने वाला है और यह शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने भी 9 लीटर देशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भेड़िया बगीचा के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोककर तलाशी ली गई तो इसके गाड़ी से 9 लीटर शराब मिला। इस मामले में अभियुक्त शत्रुघ्न कुमार राम पिता लखीचंद राम और संतोष राम पिता सुभाष राम, ये दोनों साकिन मठिया थाना विजयपुर के निवासी है, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर इनके विरुद्ध भी कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर 445 पैकेट देशी शराब बंटी बबली के साथ विशंभरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के रामायण सिंह के पुत्र अमित कुमार को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की यह कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के हथिया माई मंदिर के पास हुई, जहां आरोपी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहा था तो उत्पाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर इसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज कुचायकोट के बंगाल खाड़ पंचायत भवन परिसर में नालसा आशा जागरूकता समर्थ सहायता और कार्रवाई योजना 2025 के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम, स्थायी लोक अदालत का गठन आदि विभिन्न विषयों पर लोगों को विधिक जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हैदर अली और PLV हीरा लाल राम की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को विधिक जानकारी देते हुए बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि ऐसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने की दिशा में सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सभी लोगों को आगे बढ़कर इस कुरीति को समाप्त करना चाहिए। जादोपुर थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव में खेत में घास काटने के दौरान एक महिला को सांप ने डस लिया। आनन फानन में परिजनों ने सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जहां महिला की मौत हो गई। मृत महिला 50 वर्षीय उर्मिला देवी बताई जा रही हैं, जो मवेशी के लिए घास काटने खेतों में गई थी। इसी दौरान खेतों में छुप कर बैठे हुए सांप ने महिला को डस लिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने जैसे ही जानकारी हुई महिला को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराने का प्रयास किया, परंतु हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उर्मिला देवी की मौत हो गई। घटना के बाद इनके परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। अलग अलग थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी आज कई लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि हथुआ थाना की पुलिस ने 4 प्राथमिकी अभियुक्तों को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया। ये सभी नामजद आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी फैसन नूर पिता नूरुल हक, दूसरा जावेद अली पिता अली अकबर, इनको कांड संख्या 220/2026 में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं एक दूसरे कांड में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त शरीफ अली पिता अली असगर और दूसरा आसिफ अली पिता शरीफ अली, ये दोनों बाप बेटे बताए जा रहे हैं। ये लोग रसूलपुर थाना हथुआ के निवासी हैं। इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस तरह से कुल

0: अलग थानों द्वारा शराब और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट तथा हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट चोरी इत्यादि के कांडों में कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी 28 आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 24 घंटों के अंदर अलग अलग थाना की पुलिस और उत्पाद पुलिस ने मिलकर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने और स्थानीय थाना की पुलिस ने मिलाकर कुल 13,000 लीटर से अधिक शराब को नष्ट किया। बताया जा रहा है कि अलग अलग थानों के द्वारा पकड़े गए 129 मामलों में 11,694 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को नष्ट किया गया, तो वहीं एक्साइज पुलिस के द्वारा 50 केस में पकड़े गए टोटल 2,774 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी बलथरी चेक पोस्ट पर नष्ट किया गया। वहीं कुछ शराब को सबिया फील्ड में भी नष्ट किया गया और जेसीबी से कुचल कर जमीन में दफन किया गया। इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में वरिष्ठ पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी भैरो लाल राय बताया जा रहा है, जो बैकुंठपुर के बनौरा गांव के सुखदेव राय का पुत्र है और इस आरोपी पर भी 27/6/2026 को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था, तभी से फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिले के सभी थानों पर आज चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें चौकीदारों को उनके अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों और सामाजिक तत्वों और जेल से छूटे हुए पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्थानीय आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं शराब तस्करी और अवैध शराब के निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर टेंगराही गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष से 5 लोग जख्मी हैं, सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बताई जा रही है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और घायलों का इलाज चल रहा है, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कई शराब तस्करों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने किया गिरफ्तार। विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सर्पदंश से एक महिला की हो गई मौत। 13,000 लीटर से अधिक शराब को किया गया नष्ट और हत्या के प्रयास में भी कई आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
2: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम आप सभी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका मनपसंद कार्यक्रम आपका संदेश मिला में सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से और आज जुलाई 2026 हो गया, लगातार आपका संदेश मिला कार्यक्रम प्रसारित करता है। जो हमारे युवा साथी रेडियो रिमझिम से, ऐप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या सवारी गाड़ी के माध्यम से सुनते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें बताते चले, यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रति सप्ताह हमने जो प्रसारण किया है उसका फीडबैक हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लेते हैं। हम लगातार अपने प्रसारण को 24 घंटे जारी रखे हैं। कई श्रोता पूछते हैं कि हम चार चक्का गाड़ी में कहाँ तक सुन सकते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, वायर जो है साउंड बॉक्स में लगाइए यदि आपके पास चार चक्का गाड़ी है, और जहाँ तक आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ तक रेडियो रिमझिम आपको अपनी आवाज पहुँचाता रहेगा। रेडियो रिमझिम के कई अलौकिक कार्यक्रम हैं, जैसे भारत की कहानियाँ, कृषि चर्चा, आपन देही आपन देखभाल, भोजपुरी और हिंदी, कई कार्यक्रम हैं जो सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक रेडियो पर और ऐप के माध्यम से 24 घंटे हम प्रसारित करते हैं। रेडियो रिमझिम में जो हमारे युवा बच्चे हैं वे अपनी ऊर्जा को भरपूर लगाते हैं, कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कई बच्चियां हैं जो आरजे के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करके कार्यक्रम को प्रसारित करती हैं। कई लोग जो है अनुभवी हैं, जो अपने अनुभव के आधार पर कार्यक्रम को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हमारे जितने भी सुनने वाले मित्र हैं, वे सभी अपना कुछ न कुछ फीडबैक, सुझाव, आलोचना हम तक पहुंचाते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ रेडियो रिमझिम परिवार को यह होता है कि यदि हमारे अंदर कोई खामी है उसे हम सुधारते हैं। आपको पता ही है मानव जो है अपूर्ण है, उससे गलतियां होती है, लेकिन प्रयास किया जाता है कि एक गलती जो है दोबारा ना हो। रोज नई नई गलतियां हो लेकिन एक गलती फिर पुनरावृत्ति के तरफ न जाए, इसका प्रयास हम लोग रखते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, जो हमें सुनते हैं वही अपनी प्रतिक्रिया आज के सोशल मीडिया के जमाने में किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। जो हमारे हम उम्र के लोग हैं वे फोन के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाते हैं। कुछ बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं जो अपने बातों को लिखित रूप से रेडियो रिमझिम तक पहुंचाते हैं। इसका लाभ यह होता है कि हम जो है लगातार परिश्रम करते हुए अपने आवाज में, अपने बातों में, अपने कार्यक्रमों में निरंतर सुधार करते रहते हैं। सुधार करने की प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। व्यक्ति यदि अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है तो अपना एक आलोचक अपने साथ रखे। वह आपके कमियों को बताएगा और आपका व्यक्तित्व जो है निखरते जाएगा। आदरणीय श्रोता बंधु, हम अपने जीवन में कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हमें यह सीख मिलता है कि दोबारा न करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोई व्यक्ति यदि लगातार सुधार करता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम एक खुली किताब है। जीवन के मैं भी अपने अनुभव को रखता हूँ, हम अपने आदरणीय श्रोताओं से भी अनुभव की अपेक्षा करते हैं। अनुभव और संस्कार एक ऐसा चीज है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाता है। जीवन में यदि हम अच्छे संस्कार के साथ जीवन यापन करते हैं तो बहुत कठिनाई होगी, बहुत कष्ट होगा, लेकिन उसका लाभ यह होता है कि आपके जो अंश हैं, वंश हैं, उनके अंदर यह निखार आते जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है, हो सकता है अपने जीवन काल में बीजू आम वह न खाया हो, लेकिन उसके आने वाले भविष्य में जो उसके जनरेशन हैं, अंश हैं, वह जो है उसे जरूर चखेंगे और याद करेंगे। जीवन में अपने लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब पूरे समाज के लिए कोई बेहतर करता है तो वह जो है याद रहता है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो सुबह में चलते हैं तो शाम में नहीं चल पाते हैं, दोपहर में चलते हैं तो रात में नहीं चल पाते हैं। वैसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि सभी उम्र वर्ग के लोगों के अनुरूप हम कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। सबके मन पसंद को हम ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। अभी हाल में ही एक दिन की घटना है कि सुबह में जो है प्रादेशिक समाचार नहीं चला। राजेंद्र नगर के श्री पांडे जी का फोन आया, उनका पूरा नाम याद नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं प्रादेशिक समाचार चला। हम लोगों ने यह बताया कि कुछ तकनीकी खामियां आ गई है जिसके वजह से प्रादेशिक समाचार जो 8:52 पर सुबह में चलता है वह नहीं चल पाया। इसी तरह कई श्रोता हैं जो बिरहा के संबंध में, निर्गुण के संबंध में, सोठी बिरजाभार के संबंध में पूछताछ करते रहते हैं। जीवन में संगीत गीत जो है उत्सव लाता है, और जीवन में यदि उत्सव नहीं है तो जीवन जो है नीरस हो जाता है। हमारे जो पूर्वज थे, मेरा मानना है वह जो है सालों भर में कई पर्व त्यौहार जो है निर्धारित किए। जब हम लोग उस पर्व त्यौहार में भाग लेते हैं तो शरीर में एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर जाता है। लेकिन जब वही पर्व त्यौहार हम लोग नहीं मनाएं, अपने को कमरे में कैद कर लें, तो जीवन में अंधकार, अवसाद और निराशा भर जाता है। आप देखते होंगे कि जब अपने यहाँ छठ पूजा होता है तो देश विदेश प्रदेश से सारा काम छोड़कर ट्रेन में उस भीड़ भाड़ में सारे लोग जो है गांव के तरफ प्रस्थान करने लगते हैं, इसलिए कि हमारी श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है और मन में एक लालसा रहता है कि हम तो दिल्ली बॉम्बे या कहीं भी छठ मना सकते हैं, लेकिन इसी बहाने जब गांव में चलेंगे तो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, अपना खेत खरिहान भी देख लेंगे, गांव नगर और शहर में भी घूम लेंगे। तो पर्व जो है उत्साह भरता है, संगीत जो है उत्साहित करता है, उम्र चाहे कोई भी हो। हमने देखा है 70 साल 80 साल के आदरणीय बुजुर्ग लोगों को जो गीत भले ही पूरा न गा पाए लेकिन एक दो कड़ी गुनगुनाते रहते हैं। तो संगीत और गीत जो है जीवन में उत्साह भरता है। जिस दिन आप समझिएगा हम दादा बन गए, परदादा बन गए, नाना बन गए, अब हमारा खेल खत्म, उस दिन से आप खेल आपका सचमुच खत्म होने लगेगा। लेकिन जिस दिन तक यह मानिएगा कि अभी हमें बहुत कुछ करना है तो आप हमेशा युवा रहिएगा। हो सकता है पैर के घुटनों में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पीठ में कभी कभी दर्द हो, लेकिन सारे दर्द को भुला के उत्साह के साथ अपने काम में लगे रहिए। हम तो कई आदरणीय अधिवक्ता गण को देखते हैं जिनका उम्र जो है 70 साल से अधिक हो गया, फिर भी प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से करते हैं। कई चिकित्सक लोगों को हमने देखा है जो 80 साल 82 साल के उम्र में भी लोगों का सेवा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं। हम लोगों ने गांव देहात में सुना है कि दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिए। कई लोग तो जवानी में ही निराशा अवसाद में चले जाते हैं कि मेरा परीक्षा में रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, इस परीक्षा में जो है हमको निकलना था, मेरा पीटी मेंस इंटरव्यू सब बीपीएससी में ठीक गया तो फिर हम चूक कहाँ गए, और वह जो है अवसाद तनाव में चले जाते हैं। हार के बाद जीत है, जीवन में हारते रहिए जीतते रहिए यह एक कला है, लेकिन अपने जीवन को खत्म करना, अपने जीवन को अंतिम मान लेना यह सबसे बड़ी निराशा है। आजकल समाचार पत्रों में रेडियो पर और टीवी पर हमने एक न्यूज पढ़ा कि एक बच्ची जो है महिला सिपाही बनी थी और सिपाही रहते हुए उन्होंने बीपीएससी की तैयारी की और वह बच्ची जो है डीएसपी बन गई। सुनकर आनंद से मन जो है खुश हो गया कि देखिए कई लोग ऐसे हैं कि पढ़ते लिखते या नौकरी में रहते हुए भी अगले पथ पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में सफलता का एकमात्र मंत्र है कि पढ़ाई, और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आदरणीय श्रोता बंधु, हम अपने बात के सिलसिला को विराम रखते हैं और मिस्टर सोनू जी जो आप लोगों द्वारा भेजा गया संदेश है पढ़ेंगे और हम उसका जवाब देंगे।
3: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुंचा हुआ है चंदन ठाकुर भोरे डुमरिया से भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ऐप के माध्यम से गांव से विदेश तक लगातार और नियमित रिमझिम को सुनता हूं। बहुत ही अच्छी जानकारी, मनोरंजन अपने जिले के प्रत्येक विषय पर रेडियो रिमझिम जनमानस के जागरूकता के लिए नियमित और लगातार प्रसारित करता है, इसके लिए धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
2: आदरणीय ठाकुर जी, भोरे प्रखंड के सभी निवासियों को और विशेष करके नरेंद्र डूमर के लोगों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है कि अपने जिले के, अपने क्षेत्र के लोग रेडियो के अलावा ऐप के माध्यम से देश विदेश प्रदेश में रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। हम लोगों का मेहनत तब सफल होता है जब आप लोग सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या कोई ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है, योर वॉइस योर च्वाइस, एसएमएस फरमाइश, हेलो माई च्वाइस, यह जो कार्यक्रम है वह जो है रेडियो रिमझिम सीधे अपने श्रोताओं को जोड़ता है और यह बताना चाहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि गोपालगंज में कब बारिश हुई, गोपालगंज शहर में कहाँ यातायात अवरुद्ध है, गोपालगंज शहर में कौन सी विकास की गतिविधियाँ चल रही है, जिला प्रशासन या न्याय प्रशासन द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ सूचना मिलेगी वहीं से विकास का पथ जो है आगे के तरफ बढ़ेगा। कृषि विभाग द्वारा कृषक पाठशाला, जागरूकता कार्यक्रम, जो भी सूचना आता है कार्यक्रम के माध्यम से, हालचाल के माध्यम से हम लोग उसे प्रेषित करते हैं। हालचाल गोपालगंज के नाम से जो सूचना हम लोग देते हैं यूट्यूब पर, जो भी श्रोता हैं वह जो है सुनते हैं, समझते हैं और आपको बताते चलें कि प्रति महीना कम से कम हमें लगता है कि 1.5 से 2 लाख से अधिक लोग जो है रेडियो के अलावा यूट्यूब पर सुनते हैं हालचाल गोपालगंज। आप जब लिखिएगा हालचाल गोपालगंज यूट्यूब पर तो पिछले 10 वर्षों का सूचना जो है वहाँ पड़ा हुआ है। तो हमारा काम है कि न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी जनहित की बातें करती है, कार्य करती है, उसकी सूचना निशुल्क अपने श्रोताओं तक हम पहुंचाते हैं। आप समाचार पत्र खरीदिएगा, पैसा लगेगा, टीवी देखिएगा, डिश वाले को मंथली चार्ज देना होगा, लेकिन रेडियो ही एक ऐसा यंत्र है जिसे आप 24 घंटे सुने, अपने सुविधा के अनुसार सुने, ऑन डिमांड सुने, यह निशुल्क सुनाते रहता है। यह इसके लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद दीजिए कि जिनके अनुमति से रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप रेडियो रिमझिम के प्रति इतना प्रेम रखते हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और बड़े ही आदर के साथ आपसे निवेदन करते हैं, यदि कोई कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं या किसी कार्यक्रम में फेर बदल करवाना चाहते हैं तो इस संदर्भ में भी रेडियो रिमझिम को सूचना दीजिएगा। गीत संगीत तो जीवन के लिए जरूरी है, यदि संगीत नहीं रहे तो जीवन जो है नीरस हो जाता है। जब बच्चा का जन्म होता है उस समय सोहर गाया जाता है, जब बच्चा का जनेऊ होता है या उसका जो है अन्नप्राशन होता है उस समय भी गीत गाया जाता है। शादी ब्याह हर मौके पर जो है गीत संगीत है और जिससे जीवन में जो है उत्साह बढ़ता है। रेडियो रिमझिम सावन के महीने में कजरी सुनाता है और भादों के महीने में रिमझिम बारिश वाला गीत सुनाता है ताकि हमारे श्रोता समय अनुकाल उत्साहित रहें। जीवन में उत्साह भरने के लिए रेडियो रिमझिम जो भी कर सकता है वह करता है। इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में यदि आप जाइएगा और वहाँ के रेडियो चैनल से पूछिएगा रेडियो रिमझिम गोपालगंज बिहार, तो वह अपने आप बताना शुरू करेगा कि भारत का क्या बिहार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रेडियो स्टेशन है। और यह पुरस्कार इसलिए मिला कि आप लोग हमें सुनते हैं, अपने सुझाव देते हैं। रेडियो रिमझिम को बेहतर बनाने में आप लोगों का अमूल्य योगदान है, जिसके वजह से रिमझिम गोपालगंज बिहार का शान और बना हुआ है। आदरणीय श्रोता बंधु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संबंध को मजबूती से बनाए रखिएगा। हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
3: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। नमस्ते सर, मैं रुद्र। मेरी कुछ शिकायतें और कुछ सुझाव है कि हेलो माय चॉइस का रिकॉर्डिंग संडे को भी होना चाहिए और कोई हेलो भजन वाला कार्यक्रम भी होना चाहिए, जिसमें कि लोग अपने पसंद का भजन बजवा सके। और अंताक्षरी का कार्यक्रम दो बार चलना चाहिए तथा 4 से 5 बजे के बीच अंताक्षरी का कार्यक्रम चलना चाहिए और 3 बार कॉल करने का मौका मिलना चाहिए। और रामायण का भी कहानी चलना चाहिए। और आप कहे थे कि दिसंबर में नया ऐप लॉन्च करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और आगे लिखे हुए हैं कि रेडियो रिमझिम 12 बजे तक चलना चाहिए और हेलो माय चॉइस का रिकॉर्डिंग वीडियो कॉल ट्रोन होना चाहिए और SMS फरमाइश में भी कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश की मांग होनी चाहिए तथा संदेश मिला कार्यक्रम 2 घंटा का होना चाहिए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्र के निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार नमन करता है, प्रणाम करता है। आप हमारे अत्यंत आदरणीय श्रोताओं में से एक हैं। यह हमें प्रतीत हुआ, आपने जो पूरा संदेश लिखा है, हमें लगता है कोई ना कोई आपको गाइड किया है। आपकी माता जी जरूर बताई होंगी कि यह संदेश जो है देना चाहिए। बहुत सारी बातें आपने रखा, अच्छा लगा। बचपन में यदि अच्छा संस्कार दिया जाता है तो बच्चे जो है बड़े होने के बाद भी सामाजिक व्यवहार, सामाजिक ज्ञान को समझ लेते हैं। आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को बातचीत करने में हिचकिचाहट है, और सभी महिलाओं को नहीं, कुछ अपवाद स्वरूप हिचकिचाहट होता है। मेरा मानना है, मेरी बेटी के उम्र के, मेरे बहन के उम्र के यदि कोई महिला है तो अपने बातों को डायरेक्ट वह लिख सकती हैं, बोल सकती हैं, समझ सकती हैं। जीवन का यह पवित्र रिश्ता होता है और उस रिश्ते पर हम लोग मजबूती से खड़े रहते हैं। कहा जाता है कि रिश्ता बनाना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है, इसलिए आप अपने बातों को स्वयं रखें तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो आरजे हैं, कई बार हमसे आग्रह करते हैं कि कई महिलाएं पीछे खड़ी हो जाती हैं और छोटे छोटे बच्चों से गाने की फरमाइश कराती हैं कि बाबू यह बोल दो कि हम गाना सुनना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इतना पर्दा की जरूरत नहीं है। हम लोग 21वीं सदी पार कर रहे हैं और समय बदल रहा है, इसलिए अपने बातों को कहीं भी कहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और रेडियो तो एक ऐसा चीज है कि केवल आपको अपनी आवाज पहुंचानी है या हमारी आवाज सुननी है। यदि तस्वीर के साथ बात को देखना है तो उसके लिए टेलीविजन है, जिस पर हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। लेकिन जहाँ रेडियो है वहाँ पर्दा किस बात का। आप निसंकोच होकर अपने बातों को रखें, हम प्रतिक्रिया देंगे। चूंकि आपका भेजा हुआ जो लिस्ट है वह काफी बड़ा है, यदि प्रत्येक लाइन पर हम अपनी प्रतिक्रिया दें तो वह जो है लंबी अवधि तक चला जाएगा। मिला जुला कर हम यही कहेंगे कि जितनी भी बातें आपने रखी या रखा उसके लिए धन्यवाद। आने वाले समय में हम उसमें सुधार करेंगे। और एक बात बड़ा ही महत्वपूर्ण आपने पहुंचाया कि दिसंबर में हमने कहा था कि रेडियो रिमझिम का एक नया ऐप जो है लॉन्च करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ध्यान होगा रेडियो रिमझिम के टावर पर बिजली गिर गया था, जिसके वजह से हमारा सारा सिस्टम जो है बैठ गया था और लगभग एक सप्ताह तक हमारा प्रसारण भी रुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को हमने ठीक किया, हमारे जो सहयोगी थे दिन रात एक कर दिए, जो टेक्नीशियन थे जैसे दिल्ली बेंगलोर और कोलकाता में उनकी भी टीम आई थी, आकाशवाणी पटना का भी टीम आया था यह सब जांच परख करने के लिए। उसके बाद हमने सुधार किया और जो फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए हम रणनीति बनाए थे, दो कदम हम पीछे हो गए, जिसके वजह से नया ऐप लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन आपको भरोसा दिलाते हैं कि जीवन में आशा का साथ कभी मत छोड़िए, जीवन में विश्वास का साथ कभी मत छोड़िए, और सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो जीवन के हर जंग में आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है तो आप कितना ही पढ़ने लिखने में तेज हो और सफल हो जाएंगे। आप देखते होंगे यूपीएससी बीपीएससी या कई जो है महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, तो रिटेन के बाद बहुत ही एक्सपर्ट लोग जो है इंटरव्यू लेते हैं और वह जो है परखते हैं कि यह केवल लिखाई वाला व्यक्ति है कि कुछ बोल भी पाता है, कुछ कह भी पाता है। यदि इंटरव्यू आपका असफल हो गया तो अधिकारी बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बातचीत और बोलचाल जो है बहुत जरूरी चीज है मेरे समझ से। जिंदगी का अनुभव जो है यह जो है एक रहा है कि हमें लिखाई पढ़ाई के साथ बातचीत करते समय धैर्य और संयम का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है राधा पंडित जी का पसरमा से, रेडियो रिमझिम को रोज सुनता हूं, इस बार का बिरहा अच्छा नहीं लगा, मेरे गांव में मेरे अलावा और कई लोग भी सुनते हैं, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके परिवार को आपके ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हो सकता है कि आपको बिरहा अच्छा न लगा हो, लेकिन कई श्रोताओं का प्रति उत्तर आया कि बिरहा अच्छा था। फिर भी हम आपके बातों को गंभीरता से लेते हैं और आने वाले बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे जो बिरहा का हम प्रसारण करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी श्रोताओं को अच्छा लगे। आपकी निडरता को हम धन्यवाद देते हैं कि रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित जो कार्यक्रम आपको अच्छा नहीं लगा, आप जो है निडरता पूर्वक हमें बताए, यह जानकर अच्छा लगा। चूंकि सारा वर्क जो है, सारा काम जो है एक टीम के माध्यम से होता है, यदि किसी सदस्य द्वारा यह चूक की गई है तो हम उसमें सुधार करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि आने वाले बृहस्पतिवार को बिरहा का बेहतर से बेहतर प्रसारण करें, जो समय के अनुकूल हो और आपको अच्छा लगे। अगले संदेश मिला कार्यक्रम में जरूर अपना प्रति उत्तर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है नवीन कुमार सिन्हा जी का। सर नमस्कार, मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरी पत्नी यहां शिक्षक के रूप में काम करती है और मैं भी अकाउंटेंट के रूप में काम करता हूं और आपका रेडियो भी सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता है। आजकल इंटरव्यू नहीं आ रहा है, कृपया इंटरव्यू भी सुनाया जाए और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
2: आदरणीय सिन्हा जी, आपके पूरे परिवार को, आपके जन्म धरती को और आपसे जुड़े हुए लोगों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा जो आपने अपनी व्यक्तिगत जानकारी दी। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ, मनुष्य जो है पक्षी के तरह है, जहाँ दाना मिलेगा वहीं उड़ते हुए पहुँच जाएगा, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कार आचरण से जहाँ भी रहता है लोगों का दिल जो है जीत लेता है। यह आपका त्याग है, बलिदान है कि आप जो है गोपालगंज जिले में कार्य कर रहे हैं। आपकी श्रीमती जी एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के नियमित श्रोता हैं, और उससे भी अच्छी बात है आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपने बातों को पहुंचाया। हमारे जो श्रोता हैं वो लाखों लाख के संख्या में हैं, लेकिन हर बार जो है 10, 15, 20, 25 तक संदेश आ पाते हैं, लेकिन जो संदेश हम तक पहुंचाते हैं उनको हृदय से नमन करते हैं कि हमारे कमियों को, हमारे विशेषताओं को वह बताते हैं और निडरता से बताते हैं। यह अच्छा लगता है, हमें सुधरने का, बेहतर करने का एक अवसर मिलता है। मेरा तो मानना है ईश्वर ने जिस व्यक्ति को जो काम दिया है वह पूरा लगन से, विश्वास से करे तो उसी में विश्व ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। यदि एक किसान जो है खेती करता है, बाढ़ आता है, दह जाता है, उसके बाद भी उसे लाभ होता है, कहीं ना कहीं से यदि जिस काम को आप करते हैं और पूरे विश्वास और मन से करते हैं तो तीसरी आंखें जो हमें देख रही है वह आपके परिश्रम को बेकार नहीं जाने देगी। जीवन में हम दूसरे के साथ धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यह सारा लेखा जोखा कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर अंकित होता है, यह मेरा मानना है और अंदर से विश्वास है। हम किसी को छीन लिए, झपट लिए, ले लिए, लेकिन उसका परिणाम अंतह बुरा ही होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय और आज 2026 हो गया, इस समय जो हम लोग 60-70 साल जिंदा रहे, इसमें बहुत सारा परिवर्तन देखे, वह दौर भी देखे जब सड़क पर साइकिल चलाना मुश्किल था, वह दौर भी देखे जब गांव में ढेबरी के नीचे हम लोग किताब कॉपी लेकर बैठते थे, वह दौर भी देखे कि सूरज डूबते डूबते जल्दी जल्दी खाना खा लिया जाता था कि किरासन तेल कम है, रात भर के जलाएगा, कोटा भर तेल मिलता था और वह लकड़ी पर भोजन जो है पकता था। और आज का दौर भी देखते हैं जब लाइट ही लाइट है और गैस पर खाना बन रहा। यह ईश्वर का आशीर्वाद है कि 60-70 सालों का जो अनुभव रहा है वह बड़ा ही अच्छा रहा है। आज तो समय इतना अनुकूल हो गया है पढ़ने के लिए, सड़क पर चलने के लिए, जीवन में आगे डेवलप करने के लिए बहुत सारे अवसर मिल गए हैं, पढ़ाई में बहुत सारी डिग्रियां हो गई है, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई जो है ऐसा करना चाहिए जो तकनीकी बेस हो, जे हम जो है इंटर बीए के बाद बेकार होकर सड़क पर नहीं घूमे। पढ़ाई के साथ यदि हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तकनीकी ज्ञान लेते हैं, तो पढ़ाई के साथ वह ज्ञान जो है हमें जो है स्वावलंबन बनाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। हर व्यक्ति यदि निर्भर हो जाए कि हमें सरकारी सेवा में जाना है तो सरकार के पास भी इतना जगह नहीं है कि सबको सरकारी सेवा में ले पाएगा। इसलिए हमें जिंदगी में ए और बी दो नियम पर चलना चाहिए। पहला, जो हम कर रहे हैं बेहतर करें। दूसरा, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। यह मेरा मानना है और इसके लिए माता पिता नहीं सिखाएंगे, आपको पढ़ा दिए लिखा दिए, आप जो है स्वयं सोचिए कि हम कैसे बेहतर होंगे। लोग कहते हैं बेकारी है बेरोजगारी है, आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। हम अपने गांव गए थे और कुछ जो है लोगों की जरूरत थी तो पूरा गांव में खोज लिया, आदमीये नहीं है। क्यों? कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग परदेश चले गए, गांव में महिलाएं और बुजुर्ग और बच्चे दिखाई दिए। उसमें से भी बच्चे जो है जो आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं शहर में एडजस्ट कर दिए हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो समय जो है बहुत बदल गया है और गांव का स्वरूप भी पहले जैसा नहीं रहा, गांव का स्वरूप भी अब बदलते जा रहा है। आदरणीय श्रोता बंधु, काफी अच्छा लगा कि आप अपनी सेवाएं गोपालगंज में दे रहे हैं। गोपालगंज की जनता जो है आपका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। और हमें भी अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विकसित बना रहे हैं, नई सोच दे रहे हैं। ईश्वर आपका साथ दे और आपके कामों में प्रगति हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है प्रिया कुमारी। नमस्कार सर, मैं रेडियो रिमझिम बहुत दिनों से सुनती हूं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन पहले बात बहनों की शो चलता था, वह अभी बंद है, उसे चालू किया जाए। क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि हेलो माई चॉइस में कई मैम लोग रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो बात बहनों का भी कार्यक्रम चालू करें। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें। साथ ही देखें तो अभी संदेश कई हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
2: आदरणीय प्रिया जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपके यादाश्त को धन्यवाद देते हैं। आपने सही कहा, कई बच्चियां जो हैं रेडियो रिमझिम में आरजे के रूप में आई हैं, कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, कुछ जो है प्रशिक्षण के बाद कार्यक्रमों का भी संचालन कर रही हैं। यह दौर तो चलता रहेगा, नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग और बेहतर स्थान के लिए जाते रहेंगे और रेडियो रिमझिम चलता रहेगा। यह प्राकृतिक नियम है। आपने सही समय पर सही बात रखी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कई बार कह चुके हैं कि जो रेडियो रिमझिम को सुनते हैं वह इसके अंदर के बात को समझ पाते हैं। हेलो माई चॉइस में तीन आरजे जो है बारी बारी से रिकॉर्डिंग करती हैं। योर वॉइस योर चॉइस में भी आप देखे होंगे कि बारी बारी कई आरजे जो है इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं और कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए लगातार आपसी डिस्कशन भी विचार विमर्श भी होते रहता है। यदि यह लोग पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाती हैं तो आपने जो बताया कार्यक्रम संचालन करने में हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की आधी आबादी जो है महिलाएं हैं। महिलाएं जो है बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में अत्यंत आदरणीय और पूजनीय हैं। कहा जाता है कि जिस घर में महिलाओं का आदर और सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी आकर बैठ जाती हैं, और जहाँ निरादर होता है वहाँ विपत्ति आ जाती है। स्त्री का हर स्वरूप जो है आदरणीय और पूजनीय है और इस तरह के कार्यक्रम जो है बहुत ही बेहतर होते हैं। रेडियो रिमझिम कुछ समय पूर्व आरजे के कमी से बात बहनों का कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। कुछ लोग सरकारी सेवा में चले गए, कुछ लोग आकाशवाणी में चले गए। चूंकि जो जिस काम को करता है उसमें चाहता है कि वह और आगे जाए, और यह अच्छी सोच है। यदि हम प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं तो मिडिल और हाई स्कूल में जाने में क्या दिक्कत है। डिपार्टमेंटल कई परीक्षाएं होती हैं जिसको पास करके व्यक्ति बेहतर बन सकता है। उसी तरह सरकारी सेवा में भी यदि कोई क्लर्क है तो वह भी विभागीय परीक्षा देकर और उसमें बेहतर बनता है। तो जीवन का यही असूल है कि जो जहां खड़ा है चार कदम आगे बढ़ता है, जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप सभी को एक बार पुनः हम नमन करते हैं और घड़ी का भी इशारा है कि अब हमें निकलना चाहिए। तो चलते चलते यही कहेंगे कि आप लोग अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अपने शरीर पर कम से कम एक घंटा समय जरूर दें, 45 मिनट और एक घंटा। कई डॉक्टर का, चिकित्सक का हमने इंटरव्यू लिया, कई बार हम व्यक्तिगत रूप से मिलने गए तो हमने देखा कि सुबह में 1-1.5 घंटा वे लोग जरूर टहलते हैं, शाम को खाने के बाद 10-15 मिनट टहलते हैं। यह नियम जो है हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब जाना है तो जाना है, लेकिन जब तक हम लोग हैं स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें और दिमागी तौर पर फिट रहें, इसके लिए सुबह और शाम जो है हमें व्यायाम, कसरत, योगा जरूर करना चाहिए। जो आज के दौर में हम देख रहे हैं, जब कोरोना काल आया था तो उस समय कुछ ऐसे लोग हमारे परिचित थे कि जो अधिकतर एसी में रहते थे और गाड़ी एसी, घर एसी, वैसे लोगों पर कोरोना का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। जो मेरा अनुभव रहा है, यह कोई बात प्रामाणिकता के आधार पर हम नहीं कहते हैं, लेकिन जीवन में स्वस्थ निरोग रहने के लिए टहलना, चलना, घूमना जारी रखिए। और यदि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, निरोग हैं, तो जीवन में कई सपने जो आपके अधूरे हैं उसे पूरा करने में आपकी सहायता मिलेगी। इसी के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
3: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84-14-28 तथा व्हाट्सएप नंबर है 98-527-88-291 और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
4: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आएं कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला। ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई। मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है। सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
12: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
13: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
12: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
13: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
12: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
13: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
14: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी छोटी सी सुबह की मुलाकात आपके दिन की शुरुआत को और बेहतर बना पाई होगी।
17: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार, नमस्कार।

0: उपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
4: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल

0: विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
3: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने कालेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
5: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup.
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
16: म्यूजिक बंद हो गया, बस चलो पीछे चलो।
17: तुम अच्छे लड़के हो अबीर, मैं भी अच्छा हूं, पर तुम शुरू से अच्छे होगे, मैं नया नया बना हूं। ये साथ थी तो याद रहता था कि अच्छा हूं, वरना भूल जाता।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
11: जय हिंद सर।
12: मीट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 62052612 पे।
8: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
6: और 9097-160-02।

0: की। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह राशि अगले 3 महीने के लिए जारी की गई है। इस राशि में राज्य सरकार का भी हिस्सा मिलाया जाएगा, जिससे पंचायतों का विकास आसानी से होगा। गौरतलब है कि यह राशि पूर्व में 9 महीने के लिए निर्धारित अंतरिम बजट से जारी की गई है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी। कल भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम दंड मिलेगा।
1: दुख घड़ी में आपके हम लोग साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। जो भी लोग इसमें ओवर एक्ट किए हैं या जो भी लोग जो पदाधिकारी में इसकी संलिप्तता है, उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसीलिए कोई विद्वेष की भावना नहीं रखिए, पूरी तरह से हम इस घटना हुई है उसमें हम सब लोग आपके साथ साथ मरमाहत हैं।
0: इधर इस घटना के मामले में अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने 12 कंटेंट क्रिएटर पर मामला दर्ज किया है। पटना साइबर थाने के DSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत और तथ्यहीन पोस्ट के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 50 से अधिक पोस्ट को हटाया गया है। राज्य सरकार ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में बनने वाले 4 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। नगर विकास विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में नए निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह रोक अगले वर्ष 30 जून तक प्रभावी रहेगी। विभाग के अनुसार पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में प्रस्तावित टाउनशिप में पहले ही जमीन खरीद बिक्री पर रोक है। राज्य में गन्ना किसानों को आधुनिक खेती करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए की गन्ना यांत्रीकरण योजना की स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों के बीच 3218 आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही 80 नए यंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक में न्यूनतम 7 यंत्र अनिवार्य रूप से रहेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि आधारित स्टार्टअप से कॉलेज के छात्रों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य और मधुमक्खी पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभागों की जानकारी दी जाएगी। राज्य में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला गार्डों की तैनाती की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्वेता गुप्ता ने बताया कि राज्य के 11 जिलों में चल रहे सभी 61 वन स्टॉप सह सखी केंद्र पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि पटना सहित 27 जिलों में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कोई स्थान तय नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अल्पावास गृह बंद हो गए हैं, उन स्थानों पर शक्ति केंद्र के नाम से अल्पावास गृह खोले जाएंगे। राज्य में पंचायत स्तर पर मछली उत्पादक समितियों का गठन किया जाएगा। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि सहकारिता विभाग से मंजूरी के बाद पंचायत स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। श्री अशोक ने कहा कि इस समिति में पंचायत के सभी मछली उत्पादकों को शामिल किया जाएगा और समितियों के माध्यम से ही मछली की खरीद बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत मत्स्य सहयोग समिति का उपनियम बनाया जा रहा है, इसी के आधार पर समिति का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालयों में भी मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार इसके पूर्व सभी प्रखंडों में एक एक स्कूल का चयन मॉडल स्कूल के लिए किया गया है। इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशाला और अनुभवी शिक्षक होंगे। इसके साथ ही छात्रों को 9वीं और कक्षा से ही नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने आधार से नकद निकासी के दौरान 5000 रुपये से अधिक की निकासी पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। निगम के अनुसार नए नियम के साथ 5000 रुपये से अधिक की निकासी के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी सत्यापन के बाद पैसा निकाला जा सकेगा। इससे पहले नकद निकासी के लिए निर्धारित सीमा तक राशि निकालने के लिए केवल बायोमेट्रिक सत्यापन ही पर्याप्त था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही विभाग ने अरवल, बांका, गयाजी, नालंदा और नवादा समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश से राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। ज्यादातर स्थानों का तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मधुबनी जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल समेत वर्ग 8 तक की कक्षाओं में पठन पाठन सुबह 6:30 से 11 बजे तक करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज से 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। समग्र राज्य आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इधर प्रदेश में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह राम मंदिर परिसर में ही होगी। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरह पंचायत के उदा गांव से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगों को मोबाइल सिम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से कई कंपनियों के 47 सिम कार्ड बरामद किए हैं। किशनगंज पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 516 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र से मवेशी व्यापारी से हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के परसोथुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने दुकानों में चोरी करने के आरोपित मोहम्मद अजीम को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को भी जब्त किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पूर्णिया और कटिहार जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से प्रतिभा खोज अभियान के तहत 350 खिलाड़ियों का चयन किया है। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक आयोजित चयन शिविर में 12 से 14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। महानिदेशक ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को एथलेटिक्स और तीरंदाजी समेत अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या अधिक होगी तो उन स्थानों पर नए एकलव्य केंद्र खोले जाएंगे। इस अभियान के अगले चरण में जमुई, रोहतास, पश्चिम चंपारण और कैमूर के जनजातीय बहुल क्षेत्र में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।

0: और राजगीर बनेंगे प्रमुख आकर्षण। आज अखबार का शीर्षक है 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड से बदलेगी पटना की तस्वीर, वेंडिंग जोन से न्यू मार्केट तक होगा कायाकल्प, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है पटना, पालीगंज, मोकामा और नौबतपुर में बनेगा अत्याधुनिक बस डिपो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत बिहार के लिए 1663.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराएगी। और पूरे प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: Now pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
15: हेलो। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-11 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटू से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: चलिए ठीक का ही काम है, सभी लोग ठीक रहे, मस्त रहे। और आज गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: यार बदल ना जाना मौसम की तरह,
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
0: हाँ, गर्मी महाराज सबसे पहले, ये तो बदल ही नहीं रहे हैं।
1: अच्छा,
0: इनको तो बदल जाना चाहिए, इतना पब्लिक परेशान है गर्मी से। लेकिन ये है कि जीत पे अड़े हुए हैं।
1: जी क्या ही कीजिएगा, ये तो कभी धूप कभी छांव ऐसे हो रहा है अभी फिलहाल।
0: वो तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है इससे, नहीं तो मतलब रेडियो को तो बहुत मतलब बारीकी से हम सुनते हैं, अब लग रहा है और बारीकी से सुनना पड़ेगा, ठीक फरमाइश मिस ना हो जाए।
1: नहीं मिस नहीं होगा,
0: ठीक है।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ हाँ बाकी सब ठीक है
1: जी बिल्कुल। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी थैंक यू।

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: बाल भी सुंदरपुर।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपन बताइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: इधर तो बदरी बहुत ज्यादा उखड़ रहा है।
1: बदरी केवल हो रहा है, बारिश हो जाए तो और अच्छा है।
0: नहीं, बारिश तो अभी नहीं हो रहा है। भगवान बड़ी फुर्सत से मनाएले बारा पवन सिंह का
1: गाना।
0: जी जी।
1: और गाना किसको डेडिकेट भी है?
0: अमन है, आशीष है, राहुल आदित्य है, मोहन अनुराग है।
1: अच्छा जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: The phone ding ding, bajte hai to kehte hai hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein.
12: Hello.
14: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हाँ जी, नमस्कार मैम।
15: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एमजी 91.4 FM में।
16: हाँ जी जी, नमस्कार, मैं जगाम बड़ा गाँव जिला गुना से मांगीलाल धाकल बोल रहा हूँ मैम।
15: क्या हाल चाल है आपका?
16: मेरा अच्छा है, आप कैसे हो?
15: हम भी अच्छे हैं
16: जी मैम। और आप रेडियो सुनते रहते हैं?
15: तो बढ़िया है
16: जी मैम।
15: और सब ठीक है ना?
16: सब ठीक है, और खेती बाड़ी का बेटा है हमारा।
15: अच्छा
16: जी,
15: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है?
16: आज मुझे मोहरा फिल्म का भी सुनना चाहता हूँ मैम।
15: गाना कौन सा है?
16: तेरे बरसा पानी।
15: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
16: जी जी, गोपाल ओझा जी, गोपाल ओझा है, गरिया सिंह लोधी है, नरेश प्रजापति जी है, अमर सिंह साहू है, अमर सिंह भील है।
15: ये फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
16: जी मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: मैं मैडम पासवान बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया जी, आप अपना सुनाइए। हमें गाना सुनना है मैडम।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: ये दरबंदर हेमा मालिनी का तरह से मुझे गाना सुनना है, आजा तेरी याद आई।
1: पीछे से कुछ आवाज आ रहा है,
0: मशीन चल रहा है, काम करेंगे।
1: अच्छा जी, एक बार और बोल दीजिए, सुनाई नहीं दिया हमें।
0: तरह फिल्म का गाना सुना मैडम।
1: गाने के बोल,
0: आजा तेरी याद आई।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: ये सबसे पहले आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जितना भी हमारा श्रोता भाई हूँ रेडियो रंजीत सुनाना, सभी सुनाना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ।
1: ओके ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीत 90.4 FM।
0: ओके मैडम।

0: याद आई। अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, हेलो
12: हेलो
11: अस्सलाम वालेकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: हाँ कही खैरियत। खैरियत कही, ठीक बानी नो?
12: हाँ हाँ हम ठीक बानी, रोवा कैसन बानी? रोवा ठीक बानी।
11: आप सुतल बानी?
12: अच्छा तो खाना खा ले बानी?
11: हाँ खाना खा ले। बड़ी देर से लगावत फोन, लगावत लगावत हार।
12: अच्छा तो अब फोन लागल
11: लगाइए के छोड़।
12: अच्छा चलो कोनो लाग गई हनु अभी?
11: हाँ लाग गई बा, खुशी के बात
12: बा।
11: और सब बताए गर्मी के बारे में?
12: गर्मी की कहीं कह जाऊँ, गर्मी तो इतना ज्यादा होता कि
11: बहुत ज्यादा गर्मी हो। रात के चैन नहीं कभी।
12: हाँ रात के भी वही ना, पंखा तो चला था लेकिन थोड़ा बहुत
11: पंखा से कोनो मतलब नहीं कर रहा।
12: हाँ
11: सब हमारा का गाना सुना।
12: बता दी कौन सा गाना?
11: गाना हमारा का सुना दे, बर्बाद मोहब्बत के दुआ साथ लिए जा।
12: और गाना के ऊपर सुना हो के बाद?
11: हाँ पहले तो रहुआ सुनी रहुआ हक बार।
12: अच्छा
11: एक बार रिमझिम के जितना हमारे दोस्त बारे सब सुनी, पूरा देश पूरा दुनिया फैल गई बा रिमझिम आपका पूछे के बाद। हाँ
12: दुआ बावे।
11: हाँ हाँ हमारे संगतिया जना कहले जे एमर जे अब समय तार दोसर हो गए। हाँ रिमझिम में फूल करता रहो, सारा नाम से गाना सुना था सब
12: दोस्त लोग के सुने के मिला तरह नाम से गाना। और
11: गाना का शौरम बड़ा आशिक
12: हूँ,
11: स्कूलों में रहनी तो गाना गाने
12: तब तो बढ़िया बा।
11: हाँ तो तबियत खराब हो गई, गोड़ टूट गए, बेकार हो गए
12: ना तो वो ओंगन यार मैंने चले नहीं ना, चलत फिरत रहे ठीक रही तो
11: चलत का नहीं जाता नहीं कहा हो गए बा। छोड़िए जो पड़ल बा
12: नू
11: हमारे का रिएक्शन करता।
12: अच्छा
11: और इन्फेक्शन हो गए बा, पूरा गुड़बा पाक जाता, ठीक होता पाक जाता, फिर पाकर वाला चिराइल बा, इलाज भइल बा, आग मारता तो रात से नींद निकले।
12: तो छड़िया में कोनो खराबी बा का?
11: छड़िया हमार दे बर्दाश्त नहीं करो।
12: अच्छा
11: तो निकाले वाला बात होता और डॉक्टर को एक महीने में निकाल दे, अब जौन हो के जौन हो
12: ना सब ठीक हुई बढ़िया से दिखा ले।
11: हाँ दिखा ले बानी, कम से कम 1,00,000 रुपया लग गए। ठीक बा
12: तो फिर गाना लेकर सुनते हैं सबके साथ रेडियो
11: रेडियो
12: चले ठीक बा।
11: चले
12: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत
0: स्वागत है आपकी आवाज़ है। हेलो,
1: हाँ जी बोलिए
0: जी। नमस्कार, मैं अजय पठान बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी नमस्कार।
0: गाना सुनना था तलाश फिल्म का, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम,
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
0: जी। हेलो, आपकी आवाज़ कट रहा है।
1: हेलो
0: जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: पूछ रहे हैं सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
0: जी, रेडियो सुनने वाले को सभी को।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: जी बढ़िया।
1: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं
0: जी,
1: सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर फोन अप,
14: हेलो,
13: पिक इट अप, पिक इट अप,
14: हेलो,
13: नाउ पिक योर फोन अप,
14: हेलो।
15: जब फोन रिंगते बजते है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगू 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं खटिया थाना जिला बोल रहा हूँ। पप्पू कुमार ठाकुर है और बताइए, भारती जी बोल रहे हैं?
0: जी भारती नहीं बोल रहे हैं।
1: तो ये क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही
1: हैं। हो तो है, और 10 मिनट बचा है, 5-7 मिनट बचा है, लगता है कि उनका आखिरी कॉल हमारा ही है।
0: नहीं नहीं अभी है टाइम।
1: बोला सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: जी बता दीजिए।
1: शोर मचाए, शोर फिल्म लगाना है, गा के

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: गाना सुनना था
0: जी। गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: संतोष यादव, घर धर्मप्रसाद, वार्ड 1 नंबर पे।
0: ओके, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है मैम।
0: अब क्या हो रहा है?
1: ये तो मैं घर नहीं हूँ, बाहर में हूँ, उड़ीसा में गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी खड़ा है तो ये आज टाइम में आएगी तो एक सवा घंटा से मिला रहा था, बैठे बैठे तो लग गया अभी हाल चाल तो। माइटी कर लेता हूँ, नीमी तो रोता हूँ गाड़ी में, हमेशा बजाते रहता हूँ रिमझिम द्वारा।
0: अच्छी बात है, तो फिर बता दीजिए कौन सी गाना सुनना को।
1: तो विनय तिवारी का कोई सैड सॉन्ग चला दीजिएगा।
0: गाना एक बार फिर से बता दीजिए।
1: कोई भी सैड सॉन्ग विनय तिवारी का बजा दीजिएगा।
0: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ मैडम, पहले आपको और विनय रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को, और कुछ दोस्त लोग हैं जो राजेश है, गोपाल है, विनय है, ये सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
0: ओके, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगकिंग 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए

0: वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: जब फोन बजते है तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्ते मैम।
7: नमस्ते।
6: कौन? सोनी जी की भारती जी?
7: जी मैं सोनी और भारती नहीं बोल रही हूँ, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
6: मनोरमा
7: जी, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
6: विकास कुमार, हिमतापुर।
7: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बढ़िया है जी। और बताइए, खाना वाना हो गया मैडम?
7: जी अभी तो नहीं हुआ है, आपका हो गया?
6: हम लोग खा करके बस 15 मिनट और आराम करेंगे, बस आधा घंटा का लंच होता है।
7: अच्छा, वैसे करते क्या है आप?
6: अभी तो दिल्ली में है ना, हम लोग कंपनी में अपने काम करते हैं ना।
7: अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो बताइए कौन सी गाना सुनना है आपको?
6: गाना हमको सुनना है वो नाकाबंदी वाला नहीं गाना है
7: जी। जी
6: वही गाना सुनना है, हिंदी गाना है।
7: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
6: सबसे पहले आपको डेडिकेट है जी। जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं उनको, जितने मेरे कंपनी में दोस्त है उन लोग का सुनाना चाहते हैं।
7: ओके, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: जी नमस्ते।
7: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।
0: बोलिए संतोष महतो बोलते हैं
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपना सुनाइए।
1: जी मेरा भी बढ़िया। क्या हो रहा है?
0: काम हो रहा है, यहाँ तो बहुत धूप है, गर्मी है।
1: धूप तो बहुत है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: संतोष महतो, दिघवा दिघौली, बैकुलपुर से।
1: जी जी,
0: गाना सुनवा दीजिए, नदिया के पार वाला।
1: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: गाना सबको हैं, वो बाद में हम अपना संघ समाज बिजली महतो परमात्मा संजय को रेडियो से जितने लोग जुड़े हैं उससे।
1: ओके, चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM। नमस्ते।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
14: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
15: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
14: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
16: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
17: Pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
19: The phone game.
20: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: गाना सुनना था
0: जी। गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: संतोष यादव, घर धर्मपाशा, वार्ड 1 नंबर पे।
0: ओके, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है मैम।
0: अब क्या हो रहा है?
1: ये तो मैं घर नहीं हूँ, बाहर में हूँ, उड़ीसा में गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी खड़ा है तो ये आज मेरे को टाइम में आएगी तो एक सवा घंटा से मिला रहा था, बैठे बैठे तो लग गया अभी हाल चाल तो। माइटी कर लेता हूँ नीमी तो रोता हूँ गाड़ी में, हमेशा बजाते रहता हूँ रिमजी मैं द्वारा।
0: अच्छी बात है, तो फिर बता दीजिए कौन सी गाना सुनना आपको।
1: तो विनय तिवारी का कोई सैड सॉन्ग चला दीजिएगा।
0: गाना एक बार फिर से बता दीजिए।
1: कोई भी सैड सॉन्ग विनय तिवारी का बजा दीजिएगा।
0: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ मैडम, पहले आपको और जिन्हें रेडियो रिमजी सुनने वाले हैं सभी को, और कुछ दोस्त लोग हैं जो राजेश है, गोपाल है, विनय है, ये सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
0: ओके, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगकिम 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
1: भारती जी को दिल से धन्यवाद है। और सब सुनाइए, कैसे हैं
0: जी? बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, बढ़ा पूर्वी चंपारण से।
0: क्या हाल चाल है
1: जी? बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए, घर परिवार में और रेडियो रिंकी पूरा परिवार कैसे है आप लोग?
0: बढ़िया है।
1: और मौसम कैसा है उधर?
0: मौसम तो थोड़ा धूप हो रहा है, थोड़ा छांव हो रहा है
1: जी। वैसा ही मौसम इधर है, कभी धूप कभी छांव जी।
0: तो बताइए, कौन सा गाना सुनना
1: है
0: आपको?
1: जी फिल्म का नाम है और गाने का, इसी फिल्म का कोई भी गाना बजा दीजिएगा। गाने का मुखड़ा याद था लेकिन अभी भूल गए।
0: कोई बात नहीं है, और ये गाना को डेडिकेट भी करना चाहते हैं
1: जी। सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ, और दोस्त हो गए संजय साजी, दीपक कुमार जाफी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारस कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, उसका अभय कुमार, सुदीप कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, उत्कर्ष कुमार, आधार कुमार, बहुलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंदर प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुविता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जखमी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुनकर ऐसा भी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
0: तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: नमस्ते मैम।
13: नमस्ते
14: मैम, मेरा नाम रुखसार अंसारी है। माठी बोल रहा है
13: जी। क्या हाल?
14: गाना ठीक है,
13: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
14: सोना के कदर सुना, पहले जो गाना निकला है।
13: कौन सा सॉन्ग?
14: सोना के कदर।
13: सोना की कदर।
14: हाँ
13: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है
14: मैम? आपको और अपने पूरे परिवार।
13: ओके, तो और सब तब ठीक है ना?
14: हाँ सब ठीक है, अपना बताइए।
13: हमारा भी ठीक है। तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जा ठीक ना कहलो।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम
2: जी, मुझे गाना सुनना है मैम।
1: कौन सा गाना सुनिएगा?
2: मुझे गाना सुन तेरा प्यार, ये गाना सुनना है। मैं झूला तेरा प्यार दिल में, यही
1: अब्दुल्ला मोहसिन बोल रहे हैं ना?
2: जी मैम।
1: अच्छा, और गाना किसको डेडिकेट भी है?
2: सबसे पहले आपको,
1: ओके। तो फिर गाना प्ले कर रहा है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजान 90.4 एफएम।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: नमस्कार भारती जी।
8: नमस्कार, मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। ठीक है, क्यों,
9: खाना पीना हुआ कि नहीं?
8: हाँ, मेरा खाना पीना हो गया, आपका हो गया, तो अपना नाम बता दीजिएगा।
9: नाम मेरा विमल कुमार परमा, जिला से बोल रहे हैं, जिला गोपाल।
8: क्योंकि नाम रहता है तो अच्छा लगता है।
9: मेरा खाना मेरे पड़ता है। इतना बार प्रयास करते करते ऐसा लग रहा था कि नहीं लगेगा कॉल, में तो बहुत प्रयास करते लग गया।
8: अच्छा चलिए कोई
9: बात हो गई, नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा।
8: कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए।
9: गाना सुनना है अगर तक मेरे हाथ जाते कदमों में तेरी दर।
8: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
9: और मैं रेडियो रंजन सुनने वाला हूँ, और आप समझ दो क्या रंजन सुनने वाला
8: है। ओके तो फिर चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं?
0: हम सब भी ठीक हैं।
1: मैं बजरंगी कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी
1: मैं बजरंगी बोल रहा हूँ, वो सॉन्ग सुना है।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आवारा पन का सॉन्ग सुनना है।
0: गाने का बोल बोल दीजिए।
1: आवारा पन का जो रिलीज नहीं हुआ है तो गाना बच जाएगा ना?
0: गाना बच जाएगा।
1: उसी फिल्म का कोई भी गाना सुना, हम लोग रहते हैं बोल रहे हैं
0: तो उसमें का कोई भी सॉन्ग। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: क्या जितना आवाज सुन रहे सबको सुनवा दीजिएगा।
0: तो चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। गाना प्ले कर रहे हैं।
1: आज गाना बज जाएगा ना? आज
0: नहीं, कल बजेगा।
1: कल बजेगा?
0: हाँ हाँ, इसीलिए आपका कल बजेगा। ओके।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94353
2: और 90-97-61-60-02।

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

या फिर कॉल करिए 72 77 16 65 96 पे। और उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की शो की शुरुआत करेंगे। और आपसे भी बताइए कि आप कैसा चल रहा है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। फिलहाल जब तक आपकी मैसेज आती है तब तक इंजॉय करते हैं इस बढ़िया से गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 12:07 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं, व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो। और सबसे पहला मैसेज जो है हमारे पास, रितेश कुमार जुड़े हुए हैं फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गाना सुनना है बाली उमर को सलाम। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है साथ में। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, गणेश कुमार पिपला नारायण से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि तू मेरी जिंदगी है, यही वाला गाना सुनना है। बिल्कुल गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और मैसेज है, और मिस्टर कुमार जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है। संजय यादव जी दुबई से गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार जी, हम भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नाम ज़रूर मेंशन करिए कि आप कौन है कहाँ से। राजेश गौतम जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं कि जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। नमस्कार सोनी जी, क्या हाल है, और ओपनिंग सॉन्ग बढ़िया।

लगा मूड जंपिंग जंपिंग हो गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, कोई भी भोजपुरी लव सॉन्ग सुनवा दीजिए बिल्कुल, और आपकी आने की फरमाइश है, प्ले करने की कोशिश है। और नाम है इनका, हाँ नाम मेंशन नहीं किया है, नाम बताइए जरूर कि आप कौन है कहाँ से, और लिख रहे हैं कि गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। और नाम मेंशन करने की आदत डाल लीजिए आप लोग, क्योंकि भारती जी आ रही हैं तो फिर दिक्कत होने लग रहा है। तो नाम पता जरूर मेंशन करिए जब भी मैसेज करिए आप लोग। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप? और मेरा नाम मुकेश है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका, और गाने की फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है आपकी तरफ से। यहाँ अजय जी जुड़ चुके हैं अयोध्या से, धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आज की पहली फरमाइश लेंगे जो कि हमारे पास पहुंचा हुआ है सिवान से रितेश कुमार जी की, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। बाली उमर को सलाम, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे, नाम है इनका रितेश कुमार जी, फ्रॉम सिवान से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इनकी तरफ से भी मैसेज पहुंच गया, लेकिन सॉन्ग सुनाने के लिए धन्यवाद है। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है। और लिख रहे कि मेरा नाम दीपक है, मैं जम्मू से हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूजेदार यादव जुड़े हुए हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है। और नाम आपका सही है या गलत है जरूर बताइए। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, शाहबुद्दीन अंसारी जी हैं फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप कुमार ठाकुर हैं मिर्जापुर वाली पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए। कुछ दिन पहले सुनी जी आपने बताया कि सब ठीक बा और आपके आपके तरफ दिन का कैसा हुआ है, तो हमारे तरफ दिन जो है काफ़ी ठंडा हुआ है, लेकिन उमस है और धूप तो बिल्कुल नहीं है आज। और यहाँ आज अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है गाने की फरमाइश, दिल परदेसी हो गया कच्चे धागे से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, रंजन कुमार जी जुड़े हुए हैं पंजाब से, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

और यहाँ इंद्रदेव जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रंजीम को। यहाँ एक और मैसेज पहुंच गया, लाल बाबू जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम कुमार जी हैं बालाघाट एमपी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है, तो बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है आपकी फरमाइश को।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं? 15 साल शादी के हो गए।
0: कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ
5: जी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे
7: कमल सीढ़ी। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 12:21 हो चुके हैं स्टूडेंट घड़ी में, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो गाना सुनना है प्यारी दुल्हनिया का, और इंद्रदेव जी जुड़े हुए, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी हम रो हाजिर लगा दी, बिल्कुल हाजिर लग चुका है आपका। और पाजी यूपी चौहान से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना सुनना है दिल परदेसी हो गया सुपर सॉन्ग, और गाना बा काला बिंदिया आर्यन बाबू सिंगर की आवाज़ में, बिल्कुल फरमाइश बा प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और मैसेज करने वाले हैं संतोष कुमार पटेल जी सूरत से, बहुत बहुत स्वागत है आपका और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल परदेसी हो गया बेहतरीन सॉन्ग, और मैसेज करने वाले हैं राजेश गौतम जी मुंबई से। और यहाँ अगली फरमाइश जो है हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है दुबई से, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं संजय यादव जी। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

और हाँ कुछ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम हमें भी याद रखना है, बिल्कुल याद है। और मैसेज करने वाले हैं मुकेश जी उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका, और फरमाइश है तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है और याद भी है आप।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा अलवानी और कार्यक्रम है भोजपुरी एक्सप्रेस का, सॉरी योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं संजय यादव जी की फरमाइश है और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं गुनगुनाने के लिए थैंक यू मैम। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बिन सजनी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता, सुपर सॉन्ग, धन्यवाद देते हैं भाई को। राजेश गौतम जी है मुंबई से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग इंदर देव जी है। और एक और यहाँ मैसेज निजामुद्दीन जी है, लिख रहे हैं कि सोनी जी हमारा गाना भी बजा दीजिए, 3 नंबर में रहला। बिल्कुल गाने की फरमाइश वह प्ले करें, 3 नंबर में रहला था। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। और राम कुमार जी हैं लंदन से। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, और यहाँ विनोद कुमार जुड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ गाने की फरमाइश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। और ना फनकार तुझसे तेरे बाद आया, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं मुकेश जी उत्तर प्रदेश से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो 90.4 FM पर।

ढूंढेगा, रफी साहब ने कहा था। और यह भी कहा था कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। रफी साहब चले गए और अपने पीछे छोड़ गए उठता हुआ यादों का गुबार। उनको चाहने वाला हर इंसान यादों के उस गुबार में उन्हें ढूंढ रहा है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसे ढूंढता ही रहे, क्योंकि ऐसा फनकार बड़ी मुश्किल से मिलता है जो अपने फन से, अपनी कला से हर दिल में घर बना ले। और जब वो घर छोड़कर जाता है तो अपनी जगह यादों का एक दर्द, एक जख्म छोड़ जाता है। और जब उस दर्द उस जख्म में टीस उठती है तो दिल से बस यही आवाज उठती है,

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 97-0976-575।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। बीच में थोड़ा कुछ इशू हो गया था जिसके वजह से थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहेंगे आप सभी से। फिलहाल बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो यहाँ काफी सारे मैसेज है और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि और बताएं ठीक बानी नो। बिल्कुल ठीक बानी। और मैसेज करने वाले हैं पाजी UP 54 से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कैसे हैं जरूर बताइए। और आगे लिखते हैं कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को नजराना पसंद है। और की पसंद का तो औरों की पसंद का तो मालूम नहीं, पर मुझे आपकी मुस्कुराना पसंद हो। और क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और लिख रहे हैं कि चलिए आगे, और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर डुपर सॉन्ग, धन्यवाद देते हैं भाई को। दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर वाली पंजाब से। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना भी बजा दीजिए। बिल्कुल गाने बजा रहे हैं। और लिख रहे हैं कि सोनी जी कौन गाना बजा दी भोजपुरी तड़कता भड़कता। बिल्कुल फरमाइश हुआ, प्ले करे के पूरा कोशिश रही। और मिस्टर कुमार जी हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, सुनवा दीजिए मैडम जी। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी। तो थोड़ा वेट करिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल हम अगली फरमाइश जो प्ले करेंगे, हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है निजामुद्दीन जी है सऊदी अरब से, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश है, तू मेरी जिंदगी है। तो प्ले कर दिए हैं, इंजॉय।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले हैं निजामुद्दीन जी सऊदी अरब से, और लिख रहे हैं कि सोनी जी गाना बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज और भी है, लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी नमस्ते प्रणाम का हालबा, और हम धनंजय राव सिसही बाजार हरिहर छपरा से बाने, और हमके भी गाना सुने के बाटे, लिंक भेज दिले बानी। बिल्कुल गाना सुने के बाद तरफ ले करे के पूरा कोशिश बा, बहुत बहुत स्वागत बटे। सन्यासी रंजन बाबा जी आ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुवा के भी शो में। और यहाँ एक और मैसेज बा लिखा तनी, हेलो जी हमरो गाना सुना दें। बिल्कुल राहुल गाना भी प्ले करें, और बिना देरी के लिए हम बढ़े अगला फरमाइश की तरफ। और अगला फरमाइश हमारा पास बा इंस्टाग्राम पे, और यहाँ मनीष रजाक जुड़ चुकल बानी फाजिल नगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, लिखा तनी कि बिन सजनी के ये सावन अच्छा नहीं लगता, वेरी नाइस सॉन्ग। और मेहताब सिद्दीकी जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और फरमाइश बात तो चली रहा, और फरमाइश भी प्ले कर तनी, इंजॉय करिए अपन गाने के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और फना फिल्म से काफी खूबसूरत गाना के फरमाइश, तो इंजॉय करिए मेहताब सिद्दीकी जी अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में एक बज चुके हैं। देखते देखते एक घंटा निकल गया, पता भी नहीं चला आप सभी के साथ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और कॉल वाले लोग तो आज मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। और कॉल के लिए जुड़ने के लिए नंबर है 7277165696 पे कॉल करिए। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। और रेडियो रिमझिम के आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ रुक करेंगे तो मैसेज लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए और मेरा फरमाइश पूरा करने के लिए। और हो जो फरमाइश किया उसका नाम गुड्डू है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी आपकी तरफ से। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ व्हाट्सएप मैसेज कुछ पहुँचे हुए हैं। और मैसेज लिख रही कि हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून मैडम जी, मैं भी जुड़ गई हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। प्रीति रदास जी हैं विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, और लिख रही मेरा भी हाजी लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुका है और मेरा एक वीक कंप्लीट हो चुका है, मुझे भी सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल फरमाइश भेज दीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इरशाद मास्टर जी जुड़ चुके हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं यहाँ पे एक और मैसेज लिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि पेंडिंग में फंस गए। बिल्कुल पेंडिंग में नहीं, क्या फसल फरमाइश बात तो प्ले करें कि पूरा कोशिश हुआ। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, हेलो मैडम जी नमस्कार, धर्मेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं सोहाल अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फिलहाल कोल्हापुर महाराष्ट्र से सुन रहे रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, और भारती जी ने उस दिन आप नहीं थी शनिवार को प्रोग्राम सुने, मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं, मज़ा नहीं आया तो जैसे आप लोग मेरा साथ दिए वैसे भारती जी का भी साथ दीजिए, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था लाइव में, तो थोड़ा घबरा गई थी। और कुछ नहीं, फिलहाल आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो भी अच्छा शो करने लगेंगे। और यहाँ आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है मैंने दिल से कहा, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे हमारे पास है राजेश गौतम जी है मुंबई से, उनको सुनना है गाना। तो चलिए राजेश जी, आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं, और छोड़ के हमके नौकरियाँ करे लें। तो चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे राजेश कौशल जी की फरमाइश थी मुंबई से। और यहाँ मैसेज भी पहुँच गया इनकी तरफ से, लिख रहे हैं सॉन्ग प्ले करने के लिए दिल से धन्यवाद है सोनी मैडम जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आगे। यहाँ और भी सारे मैसेज है हमारे पास, शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक और प्रेम मदेसिया जुड़ चुके हैं पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और हमारे यहाँ मौसम की बात करें तो काफ़ी उमस है, धूप नहीं है लेकिन गर्मी कम भी नहीं है। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, थोड़ा देर वेट करिए, आपकी बारी आती है, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और आप सभी से एक और बात की, अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑन ईयर में मनोरमा जी, और साथ में अब रहेंगी 4 बजे तक आपकी फरमाइशों के साथ। ये भी बहुत बहुत स्वागत है मनोरमा जी आपका भी शो में, हमारे योर वॉइस योर चॉइस में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी।
0: और आपकी फरमाइशें अब मनोरमा जी भी प्ले करेंगी हमारे साथ में, ये भी स्टूडियो में मौजूद है। फिलहाल बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ बिना देरी किए। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है बलमुआ कैसे तेज है मेरे छोटी नंदी, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका अनिल कुमार जी जो कि जुड़े हुए हैं दरभंगा से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: वेलकम बैक आप सभी का रेडियो टनसिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 1:15 हो चुके स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास। और यहाँ बबलू जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने रहिए हमारे साथ में और सुनते रहिए रेडियो टनसिम को। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है उसे शामिल करेंगे और प्ले करेंगी। हमारे साथ है मनोरमा जी, तो चलिए अगली फरमाइश लेते हैं।
1: ये अगला फरमाइश जो है आरजे वंशिका जी के तरफ से है
0: और गाने का बोल है मैंने दिल से कहा। तो चलिए आरजे वंशिका जी की फरमाइश पे एंजॉय करते हैं इनके पसंद का गाना रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। और काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। गाने की फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी काफ़ी बेहतरीन गाने की फरमाइश आरजे वंशिका जी की तरफ से लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ और भी मैसेज है। ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं नारायणपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ आगे और एक मैसेज पहुँचा हुआ है, गणेश कुमार है पिपरा नारायण से बोल रहे हैं कि हम लोग गानवा बजा दी और बिल्कुल अगला फरमाइश राउरे बाटें। और यहाँ कॉल भी पहुँचल बात, हम अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से ले मुकराबाद राउर फरमाइश जरूर प्ले करें। और चलिए बढ़ेंगे कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है तो मनोरमा जी शामिल करेंगी अगली मैसेज को। तो चलिए मनोरमा जी।
1: छोटे बच्चे के ताज़ा उगते हुए दांत गन्ने की मशीन जैसी है, जिसमें आपकी उंगली गई तो समझो आपकी चीख निकलनी तय है। यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हैं। और ये मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी।
0: आपको भी चेक की है मनोरमा जी?
1: तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं।
0: अच्छा नहीं, हम तो चेक नहीं किए पर मुझे पता है। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और फरमाइश क्या है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: जी मैं साहबुद्दीन फरीदाबाद से।
0: जी कैसे हैं साहबुद्दीन जी?
2: जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं।
2: मौसम का हाल बता दीजिए।
0: अरे मौसम का हाल तो मत ही पूछिए, धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी काफी है।
2: नहीं हमारे यहाँ भी कमी नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत कंप्रेसर तो वाली है।
0: अब गर्मी है तो गर्मी रहेगा ही, उससे कहाँ भाग सकते हैं।
2: तो मौसम की तरफ बदलना, गाना कैसे निकलेगा मौसम की तरफ बदलते में जाओगे।
0: जी जी बिल्कुल।
2: सुना
0: अच्छा, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। चलिए गाना डेडिकेट भी करिए किसी को।
2: नहीं हम किसी को नहीं पहचानते हैं, जो हम सुनते हैं उसी को सुना देंगे।
0: ओके तो गाना प्ले कर दिया आपका।
2: थैंक यू,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कॉल की एंजॉय करिए गाने को।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रंजीम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। यहाँ 1:30 हो चुके हैं शुरू घड़ी में। और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए। इंद्रदेव जी है, लिख रहे हैं कि वेरी टू गुड सॉन्ग, और आपकी भी फरमाइश है, बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजीम को। यहाँ एक और मैसेज पहुँच चुका है, लिख रहे हैं कि हेलो सोनी दी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और बलराम यादव जी हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं और साथ रहने के लिए, और कल जो दोस्ती ख़त्म किए थे इनको क्या क्या क्या किया जाए, कोई सजा हो तो आप बताइए। और कोई बात नहीं, दोस्ती ख़त्म नहीं कीजिए, दोस्त को माफ़ कर देना चाहिए। अगर दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो जाए और पीछे पीछे घूम रहे हैं तो फिर तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती जी बक्सर से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, संजय कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नाटका से, सुनते रहिए रेडियो रूम से 90.4 एफएम को। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और केशव राज जी जुड़ चुके हैं बेगूसराय बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फिल्म है मेरे हमसफर से गाना सुनना है, अगर तुम अच्छा अगर टाइम मिलेगा तो मेरा सॉन्ग चला दीजिएगा, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और सॉन्ग है किसी रात में किसी मोड़ पे, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। एक और यहाँ मैसेज है, फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि और यहाँ लिख रहे हैं कि शो में डर डर कर गाने मैसेज पढ़ती थी, मेरे को लगा फर्स्ट टाइम है योर वॉइस योर चॉइस में। जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही था उनका। और मैसेज करने वाले हैं रितेश कुमार जी फ्रॉम सिवान से, और आगे यहाँ मैसेज है और भी सारे, लिख रहे हैं कि फिल्म में अर्पण का गाना सुनना है, लिखने वालों ने लिख डाले, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। धर्मेंद्र कुमार जी है सवाल अयोध्या से, जो कि अभी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल ये अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और लिख रहे हैं कि मेरे इधर बारिश हो रहा है सिवान में, तो थोड़ा बारिश इधर भी भेज दीजिए। और गणेश कुमार जी हैं पिपरा नारायण से, गाने की फरमाइश है पिया जी की मुस्की, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

और यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी लिख रहे हैं कि हेलो मैम हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, एंजॉय करिए पिया जी के मुस्की गाना। गणेश कुमार पिपरा नारायण जी के फरमाइश नारायण से है, जो कि उनकी फरमाइश है।

0: आज के शो में बहुत अच्छा लग रहा है, भारती जी दीदी के साथ में और मुनरमा दीदी के साथ में और आपके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है शो सुनने में। बाकी अभी मेरी तरफ बारिश हो रहा था, बहुत सुबह से बहुत तेज हवा चल रहा था, बाकी अभी बारिश हो रहा था, अब बारिश छूट गया है।
1: चलिए, बारिश छूट गया अच्छी बात है, और मौसम तो काफ़ी ठंडा होगा आपकी तरफ। और यहाँ आगे बहुत सारा मैसेज हमारे पास पहुँच गया, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग पिया जी के मुस्की, वैसे सजनी के भी मुस्की लाजवाब लागे ला। जी हाँ बिल्कुल। और अनिल जी जुड़ चुके हैं छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमरो गाना बजा दे बिल्कुल। और दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर वाली पंजाब से, और आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि हाय जनाब कैसी हैं, और मैं भी जुड़ गई हूँ आपके शो से, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए बिल्कुल। और सबीना खातून फ्रॉम दुलदुलिया से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे लिखती हैं कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, आपका पसंद तो मुझे पता नहीं पर हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है, क्या बात है। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ। कन्हैया दास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका दुबई से। और फरमाइश है तो आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग पिया जी के मुस्की। और रितेश कुमार जी है फ्रॉम सिवान से, उमा शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, नमस्कार जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, नंद कुमार जुड़े हुए हैं शिरोली मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी नंद जी। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं बेंगलोर से, और यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और आप कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं, और ठंडा ठंडा मौसम इंजॉय करिए। हमारे यहाँ तो मौसम की बात करें तो काफ़ी गर्मी है। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करेंगे, सुनेंगे कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो 90.4 एफएम में।
2: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, क्या हाल चाल बा?
2: हाल चाल ठीक बा, हम खाओ से
1: बो जी जी।
2: आज गाना सुनाए अल्लाह का स्वाद रख ले लिया रे पिजड़े वाली मुनिया।
1: पिजड़े वाली मुनिया
2: ये
1: गाना के नाम एक बार और बताएं।
2: अल्लाह के स्वाद रख ले लिया रे पिजड़े वाली मुनिया।
1: जी जी और डेडिकेट भी रही
2: जनरल उसका सब कुछ रही। हम और है प्रभु रहा शामिल।
1: जी जी तो गाना प्ले कर दे बानी।
2: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करने।

0: उड़ उड़ बैठी बदलवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बदलवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बदलवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947044468 पे।

वेलकम बैक रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ 1:45 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम पे मनीष राज की फरमाइश है और लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है, बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो सजाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पिजे वाली मुनिया, काफ़ी सुंदर गाना। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हर जख्म को लफ्ज़ों में बयां करना मुमकिन नहीं, कुछ दर्द सिर्फ सुरों के खुराक से ठीक हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और दिस लाइन डेडिकेट टू रेडियो रमजिम 90.4 एफएम। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और यहाँ है मैसेज, लिख रहे हैं कि 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ कोल्हापुर में। और देखिए, जहाँ हो रही है बारिश वहाँ हो ही रही है, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ सिर्फ क्या बोलेंगे, तक तक की लगी हुई है और बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि रामाजी प्रसाद की पसंद लाजवाब है और हमेशा लाजवाब ही होती है। मैसेज करने वाले उमर शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर, ओह हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर की खूबसूरत पंक्तियाँ है, साबिर कुमार और अनुराधा पौडवाल जी द्वारा गाए गए ये रोमांटिक नगमे हैं। और 1987 में फिल्म जवाब हम देंगे से गाने की फरमाइश है। बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ में। और अजय जी हैं जुड़े हुए हैं अयोध्या से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, थोड़ा वेट करिए। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिजे वाली मुनिया। और ये गाना 1966 में आई थी फिल्म तीसरी कसम का है। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, लेकिन इसके गाने आज भी सुपर हिट है पीले वाली मुनिया, और सुनकर मज़ा आया। और मैसेज के साथ है रितेश कुमार जी फ्रॉम सिवान से। और आगे यहाँ मैसेज है अनिल जी है दरभंगा से, लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम मेरा गाना सुनाने के लिए, काफ़ी देर बाद आपकी फीडबैक पहुँची। और आगे यहाँ और भी सारे फरमाइश है हमारे पास, लेकिन हम अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी हैं जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और उनको सुनना है गाना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो चलिए प्ले कर दिए आपके गाने को, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रमजिम को। नेक्स्ट गाना जो है वो है कॉल के माध्यम से

0: 90.4 रेडियो रमजम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी की फरमाइश है, जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है कॉल के माध्यम से, और अगली फरमाइश जो यहाँ प्ले करेंगी है मनोरमा जी। तो चलिए मनोरमा जी बात करिए और लीजिए अगली फरमाइश का।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.2 एफएम में। जी
2: आरती जी बोल रहे हैं कि सोनी जी?
0: ना भारती है ना सोनी है, मनोरमा है ये।
2: हमरा तो लगा था कि हमारा नंबर हो गया था ब्लैक लिस्ट में, और लगा दे 4-5 से लगा हुआ था
0: ब्लैक लिस्ट में, रही तन रिंग ना होई, एक रिंग पे कट जाए।
2: अच्छा रिंग पे रिंग करो था नहीं ये जो कि प्योर सन खास से क्या पता है क्या किया तो।
0: अच्छा ली अभी उठ गल बनो।
2: हां मैं तो उठ गया, पर उधर का ये ज्वाइन कर था।
0: ज्वाइन तो ही काफी दिन से बने लेकिन लाइव में आज दूसरा दिन है यहाँ के।
2: अच्छा
0: जी
2: बने बनिया बनिया बात कर।
0: कृष्णा प्रसाद बात करते नहीं नो?
2: जी जी जी
0: हाँ जी।
2: वाह भुला गई तनी
0: भुलाई रहती तो फिर कैसे पहचानती बताई तनी और के
2: काल कम से कम 20 कॉल पहले मैंने भोजपुरी आई थी
0: आई लो ये मानो तनी बहुत कॉल आई रहे। हाँ व्हाट्सएप पे भी काफी सारा फरमाइश रहे बहुत छुटल बाटे मान सकते
2: हैं।
0: ना ना ऐसा ना किसी आई लो कि ना करे
2: तो हमारा गाना ही सुनने के बाद सूर्या फिल्म से
0: जी
2: यार काहे के बनाए राम ने कोई आए मेरा जी।
0: काफी खूबसूरत गाना।
2: अच्छा जान दियो क्या पसंद?
0: जी जी बिल्कुल पसंद आई हमके, जब पसंद आ गए तो श्रोता लोग के भी आई। ऐसा बात तो नहीं के सबके ना सही लेकिन सबके अपन अपन पसंद होला, कुछ लोग के तो जरूर आई।
2: रामा जी भाई जी के तो गाना बड़ा सुपर फास्ट लागल
0: और राहुल गाना भी वहाँ के पसंद आई, ये बात की गारंटी बा हमरा।
2: हमने के जमाने के सब गाना है तो ठीक
0: तो गाना प्ले कर दे बनी ठीक बा।
2: हाँ
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करने, एंजॉय करी गाना के।
2: नमस्ते
0: जी नमस्ते।

कुछ मैसेज है, लिख रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग वेरी गुड सॉन्ग सोनी जी, और यू टच माई हार्ट बाई प्लेइंग दिस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले नौशाद अली जी मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है संतोष कुमार पटेल जी सूरत से, लिख रहे हैं कि सुपर लाजवाब सॉन्ग एक। और यहाँ मैसेज है नारायण जी, लिख रहे हैं कि लाजवाब क्या गाना है मैम, इंजॉय करिए।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
0: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
1: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

वेलकम बैक रेडियो रंसिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम में और वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास और सबको क्या कहना है कि हम नहीं दिख रहे हैं क्या मैम? सबको ही दिख रहा है हमको और सबकी फरमाइशें भी दिख रही है मुझे। 2:01 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि जबरदस्त सॉन्ग सुन के मज़ा आ गया। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका, भैया नाम भी केशव राज जी, बिहार बेगूसराय से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अरे मैडम जी, आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा लगता है हमें सुनकर, लेकिन हम पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा, और आप शो में नहीं रहती हैं तो मज़ा नहीं आता है। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से शो छोड़ के जाना पड़ता है। और यहाँ मैसेज है, संतोष कुमार पटेल जी लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि लाजवाब सॉन्ग, ओम प्रकाश जी हैं नारायणपुर सिवान से। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिखने की क्या गाना है मैम, और लिखते हैं कि हर कोई मेरा हो जाए ऐसा मेरी तकदीर नहीं, हर कोई मेरा हो जाए ऐसा मेरी तकदीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ जिसकी कोई तस्वीर नहीं, दर्द से रिश्ता है मेरा खुशियाँ मेरी नसीब नहीं, और मुझे भी कोई याद करे मैं इतना भी खुश नसीब नहीं। ओह, ऐसा बात नहीं है, मैं याद करती हूँ आपको हर रोज़ शो में। और पाजी यूपी चौवन से है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ा। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, और फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है प्रिय मदेशिया पुराना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश है, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, यानी जिंदगी बन गए हो तुम, तो इन्जॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रंसिम 90.4 FM पे प्ले कर दें आपके गाने को।

बहुत ही अच्छा गुनगुनाती हैं और मैसेज के साथ है, नाम है इनका, नाम मेंशन नहीं किया, नाम पता मेंशन करिए और नए लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफाइल पे नाम सनी दिखा रहा है आपका, बहुत बहुत स्वागत है शो में। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि जिंदगी बन गए हो तुम, बहुत ही अच्छा गाना और आपके सिंगिंग है, मुझे गाना सुनना था। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ मुकेश करवार जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, काफ़ी दिन बाद शो में आए, कैसे हैं जरूर बताइए। और सुनते रहिए।

और काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश के साथ हैं प्रेम देशो जी पुराना कुशनगर उत्तर प्रदेश और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी दिल से और बहुत ही प्यारा गाना है जी। हाँ काफी प्यारा गाना है और आगे बढ़ेंगे आगे यहाँ और भी मैसेज है। लिख रहे हैं कि जिंदगी बन गए हो तुम सुपर लाजवाब मस्त सॉन्ग और रोहित जी देहरादून से और आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि एक बात बोलूं मैम आपकी आवाज़ सुनने के लिए ही आते हैं वरना शनिवार को नहीं आया था। ऐसा नहीं कहिए क्योंकि भारती जी भी सुन रही है उनको अच्छा नहीं लगेगा और आगे यहाँ मैसेज और भी सारे हैं शामिल करेंगे और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारे मेघनाथ भाई बोल रहे हैं कि नाइस सॉन्ग है और मैसेज करने वाले हैं धर्मेंद्र कुमार जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और अगली फरमाइश यहाँ पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से बात करेंगे सुनेंगे कौन है कहाँ से और यहाँ तारकेश्वर माझी जुड़ चुके हैं दुबई से बहुत बहुत स्वागत है आपका और आगे लिखते हैं कि मर गई मछली अपने ही पानी में कर लिया इश्क भरी जवानी में सोचा था साथ निभाएंगे मरते दम तक बेवफा निकला महबूब मेरी कहानी में और इस मैसेज के साथ है तारकेश्वर माझी जी दुबई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े और आगे एक और यहाँ लाइन पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश से प्यार कभी कम नहीं करना मुकेश करवाल जी हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश और आगे लिखते हैं कि उन्हें शक है कि हम उन पे मरते हैं हमें शक है कि वो हम पे मरते हैं जिंदगी के दौर यूं ही गुजर जाते हैं ना वो कुछ पूछते हैं और ना हम कुछ कहते हैं क्या बात है और बिल्कुल फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ आगे और भी मैसेज लिख रहे हैं कि सुनी दी ओहो आपकी फैन सीता भाभी होंगी है जब आप गुनगुना देती हैं और समझ में नहीं आया मुझे आपका बात एक बार क्लियर करके लिखिए आप राकेश भारती जी हैं बक्सर से और आगे यहाँ लिख रहे हैं कि आप नहीं तो फिर मैं तो नहीं सुनता रेडियो और मैसेज के साथ है मिस्टर कुमार जी मोतिहारी जिला से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यहाँ अगली फरमाइश पहुँच चुकी है कॉल के माध्यम से तो चलिए बात करते हैं देखते हैं कौन है कहाँ से और सुनते हैं इनकी फरमाइश को और जी

यहाँ प्रीति रदास जी हैं, लिख रहे हैं कि न्यूज़ के बाद मेरा गाना चलेगा। जी बिल्कुल, न्यूज़ के बाद ही चलेगा, क्योंकि अभी जो फरमाइश है वो कॉल के माध्यम से लेंगे और यहाँ कॉल रिसीव करते ही कॉल कट चुकी है। तो व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश है। काफ़ी खूबसूरत गाना है, लॉलीपॉप लागेलू, और गाने की फरमाइश के साथ है संतोष कुमार पटेल जी। सॉरी, गाना है काला बिंदिया, आर्यन बाबू सिंगर के आवाज़ में। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

और इस गाने के पार हम बढ़ेंगे दोपहर समाचार के तरफ और आप सभी से फिर मुलाकात होगी दोपहर समाचार के बाद, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: वुमेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स बाय डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 अरीना साबालेंका। विद दैट वी एंड द मिड डे न्यूज।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
6: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
8: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
6: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
8: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
6: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
9: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
10: जगन्नाथ तकानेन दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
6: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
11: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
6: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
12: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
6: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदुल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करोलिना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मैक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
14: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
15: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
16: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
17: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
18: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
16: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
15: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
16: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
19: कॉल करें 87-894-18744।
20: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
21: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
20: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
21: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
22: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
23: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
16: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
23: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
16: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
23: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
16: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
23: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
25: रेडियो रिमझिम,
24: सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास, गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुके हैं स्टूडेंट घड़ी में और 4 तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। और यहाँ फरमाइशों की बात करें तो काफ़ी सारे फरमाइश हैं हमारे पास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आसिम नूरमा जी जो कि हैं हमारे साथ, आपकी फरमाइशें ये भी प्ले करने वाली हैं। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और बिना देरी किए बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुनी जी हमारा भी हाजिर लगा दीजिए और हम भी जुड़ गए हैं। सो से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और नाम मेंशन करिए, नाम कौन, आप कौन है, कहाँ से। और यहाँ नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है और आपकी फरमाइश जो है जी हाँ बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी आप मैसेज हमेशा शामिल कर देती हैं लेकिन फरमाइश पूरा नहीं करती हैं, क्यों? तो ऐसा बात नहीं है आप ही का नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैसेज शामिल हो जाती है लेकिन फरमाइश पूरा नहीं हो पाता है, काफ़ी सारे फरमाइश रहते हैं लेकिन आज आपकी फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। और तारकेश्वर माझी जी दुबई से लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ राकेश भारती जी है लिख रहे हैं कि सीता भाभी अब रेडियो रिमझिम सुनने लगी है, अपलोड ऐप लोड कर चुकी हैं और आप गुनगुना रही हैं तो वो खुश हो जाती हैं आपके गुनगुनाने पर, हो यही बात थी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सीता भाभी को भी धन्यवाद कहिएगा। और जब सुनती है तो शो से जुड़ने बोलिएगा, पहले तो आती थी और अभी जब ऐप से सुन रही हैं तो अभी भी बोलिएगा सुनने के लिए। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिख रही है कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है। और शाहिद जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और गाने की फरमाइश है आरजू की राहों में, तो बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है लिखना है कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए, बिल्कुल। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास मैसेज है प्राप्ति शर्मा जी का और इनको सुनना है गाना गोरिया चाल तो हर मतवाली, तो सुनिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर, प्ले कर दें आपके गाने की फरमाइश को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी। गाना की फरमाइश करने वाली है प्राप्ति शर्मा जी और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है मनीष रजाक जी की फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से और आग चाहत की लग जाएगी। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश भी प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे मनीष रजाक जी फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ और लिख रहे हैं कि वाह वाह गुड सॉन्ग। और तारकेश्वर माझी जी हैं दुबई से, उनको भी सुनना है गाना, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं। और गाने की फरमाइश है मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ तारकेश्वर माझी जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं थैंक यू मैडम जी गाना सुनाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैं भी जुड़ गया हूँ शो से। और यहाँ अली अख्तर जी जुड़ चुके हैं कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ नई मंसारी जानतारा से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मुकेश करवाल जी लिख रहे हैं कि सोनी जी हम भी हैं लाइन में, बिल्कुल लाइन में खड़े हैं, तो आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। प्रीति रैदास जी हैं, जी हाँ सबकी फरमाइश से दिख रही है, थोड़ा वेट करिए हम आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। दिनेश मिश्रा जी की फरमाइश है, तो आप भी थोड़ा वेट करिए और फिलहाल इंजॉय करिए तारकेश्वर माझी जी की फरमाइश। मुझे लोग समझ कहते हैं कदमों की धूल।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: अक्सर अच्छे लोग ही दिल तोड़ देते हैं।
1: सच बात है क्या मनोरमा जी? इसमें कितनी सच्चाई है आपको पता है?
0: ये तो मुझे नहीं पता।
1: और इनकी तरफ से फरमाइश भी है, धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है और आगे यहाँ बढ़ेंगे बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि काम धंधा छोड़ के हमारे मेघनाथ भैया रेडियो रिमझिम सुन रहे हो, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है और अगली फरमाइश जो है हम आपका प्ले करेंगे। और गाने की फरमाइश है लिखने वाले ने लिख डाले तो बिल्कुल प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ पहली अगली फरमाइश जो प्ले करने जा रहे हैं वो हमारे पास पहुँचा हुआ है। प्रीति रे दास जी हैं लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से और इनको सुनना है गाना आपके आ जाने से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

धन्यवाद आपको और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो से जुड़े और आप सब इनका भी साथ दीजिए कि ये भी सबके साथ जुड़ जाए मिल जाए, क्योंकि अभी इन लोगों को थोड़ा सा घबराहट हो रही है और मैसेज के साथ अपना नाम पता मेंशन किया करिए ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। मैं तो खैर ज़्यादा दिन से हूँ तो आप सभी के को पहचान चुकी हूँ, मैसेज से पहचान लेती हूँ कि आप कौन है कहाँ से, लेकिन इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो नाम पता मेंशन करने की आदत फिर से डाल लीजिए आप लोग।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, प्रीति रदास जी की फरमाइश है, लिख रहे हैं कि आप भी गुनगुना दीजिए मैम थोड़ा सा। बिल्कुल गुनगुनाते, लेकिन ये गाना मुझे याद नहीं है, इसके लिए नहीं गुनगुनाया इसमें, और जो याद रहता है उसमें गुनगुना देते हैं। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं काफ़ी सारे, और सब के गाने की फरमाइश बाकी है। और यहाँ रितेश पांडे जी की आवाज़ में गाना सुनना है, जाए चंदा लियावा खबरिया। और मैसेज करने वाले नाम इनका मेंशन नहीं है, नाम पता मेंशन करिए कि भाई आप है कौन और कहाँ से। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, नाम एक बार बता दीजिए। और रुद्राक्ष कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर याद पर दिल का दर्द ताजा हुआ। सुनी थी सिर्फ लोगों से जुदाई की बातें, खुद पर बीती तो हकीकत का अंदाजा हुआ। बात बिल्कुल सही है, और आपकी और क्या रुला के ही दम लीजिएगा क्या अनिल जी। और लाइन पहुंचाने वाले हैं अनिल जी चोटपुर से, और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। और यहाँ जी जी हैं, लिख रहे हैं कि हमें भूल गई हैं क्या मैम। बिल्कुल नहीं भूले हैं आपको। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दूसरे मैम का क्या नाम है, दूसरे मैम का नाम है मनोरमा, और जो हमारे साथ बैठी हुई है यहाँ पे, और सब ऑब्जर्व कर रही हैं कि क्या करना है कैसे करना है। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपके आ जाने से गाना बेहद खूबसूरत, लेकिन गाने में एक शब्द है साकी, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या। और मैं आफ्ताब आलम दोहा कत्तर से, बहुत बहुत स्वागत आफ्ताब जी आपका भी। और किसी को साकी का मतलब पता है तो इन्हें बता दीजिए। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून सोनी जी, और कृष्ण मोहन जुड़ चुके हैं सिपाया खास से, बोल रहे हैं सभी लिस्नर को, सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। बिल्कुल बोल दिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है कि बोली थी कि आप भी साथ हो, साथ दीजिए बिल्कुल। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, और इतना लंबा चौड़ा मैसेज, और लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी, अमन नाम है मेरा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि आज का फरमाइश है, आपकी आवाज सुन फरमाइश तो बात की बात है, आपकी आवाज सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है, हर दिन थोड़ा और हसीन लगने लग जाता है। यूं मुस्कुराती रहिए और महफिल सजाती रहिए, रेडियो की दुनिया में आपका अंदाज सबसे प्यारा नजर आता है मैडम जी। और ये लाइन आपके लिए अमन की तरफ से सोनी जी, बिल्कुल। और अंकित प्रिंस जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सुनते रहिए रेडियो रमजिम 90.4 एफएम को, और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश पहले एक और यहाँ लाइन पहुँचा हुआ है, और लाइन ये है कि लिख रहे हैं कि दिल का हाल बताना नहीं आता, किसी को ऐसे तड़पाना नहीं आता, सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ मगर बात करने का बहाना नहीं आता। हो ये बात है। और मैसेज करने वाले हैं मनीष जाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहाने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे बहाने हैं हमारे यहाँ पे रेडियो रिमझिम के पास। हेलो माई चॉइस का कार्यक्रम है ये है, फिर एसएमएस फरमाइश है, आप जिस कार्यक्रम में चाहे बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहाना खुद पे खुद आपके पास है, और आवाज़ सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले फिर एक मैसेज यहाँ। चलिए मैसेज को रोकेंगे, कॉल पहुंचा हुआ है, बात करेंगे और अगली फरमाइश लेंगे। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम में।
1: मैं रितिक कुमार बात कर रहा
0: हूं। जी क्या हाल चाल है रितिक जी?
1: ठीक पे
0: है। कहां से बात कर रहे हैं आप? साबुद्दीन टोला से।
1: हाँ
0: जी, और गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: अपने पसंद से कोई गाना सुना दीजिए।
0: मेरे पसंद से सुनिएगा। तो ये बताइए कि आपको मेरे पसंद से कैसा गाना सुनना है, हिंदी भोजपुरी किस टाइप का गाना सुनना है?
1: भोजपुरी में।
0: भोजपुरी में सुनना है, ओके। तो चलिए गाना प्ले कर दिया आपका खेसारी लाल की आवाज़ में, ठीक है? छुअल चाहे तो निकल जालू हाथ से। एंजॉय करिए गाने को रेडियो रमसिम 90.4 एफएम पर। बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

0: 104 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना चल रहा था, गाना तो खैर मेरे पसंद का था लेकिन फरमाइश जो थी कॉल के माध्यम से पहुंची थी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज कोई भी काम अपने मन का कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि आज मंडे है। ओहो, और ये बात मुझे नहीं पता थी, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार सोनी मैडम जी, और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर मैसेज कर दिए। और गुरु नानकपुरा बठिडा पंजाब से किशोर सबलनिया जी हैं, सवित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि तारों में जैसे खूबसूरत चांद सबसे न्यारा है, तारों में जैसे खूबसूरत चांद सबसे न्यारा है, वैसे ही सोनी जी हमें आपका नाम सबसे प्यारा है। ओहो, और मिस्टर कुमार जी है मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि भोजपुरी सॉन्ग सुना दी मैम, तो कौन सा गाना सुने के बाद भोजपुरी में जरूर बता दी और हम सुनाई का पूरा कोशिश करें। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि यहाँ बहुत तेज आंधी चल रहा है मैडम जी। संदीप कुमार जी है हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत और काफ़ी दिनों बाद आए, कैसे हैं बताइएगा। और आपकी श्रीमती जी कैसी हैं, वो भी नहीं जुड़ रही हैं तो ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमसिम को। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक गाना है प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल काहे नहीं करेंगे, और इसीलिए तो हैं हम। और गाने की फरमाइश से भेज दीजिए। और अंकित प्रिंस जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कैसे हैं आप बताएं नहीं। और आगे यहाँ मैसेज है, और यहाँ मनोरमा जी के लिए है, तो मनोरमा जी शामिल करिए, आपके लिए मैसेज पहुँचा हुआ है।
1: ये पलके बिछा कर तेरा इंतजार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, जलकर हसरत की राह पर चिराग, हम सुबह और शाम तेरे मिलने का इंतजार करते हैं।
0: है, क्या बात है। और मैसेज के साथ है मनीष जजाक जी, फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले कर दिए, इंजॉय करिए। और मैसेज पहुँचा है गाने की फरमाइश जो है दिलीप कुमार ठाकुर है मिर्जापुर वाली पंजाब से, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। और आज इनके लड़के का सनी कुमार जी का जन्मदिन है, तो मेरे तरफ से आपके लड़के और पूरे रेडियो रंजन टीम की तरफ से आपके बर्थडे से आपके बेटे सनी जी को जन्मदिन की ढेरों सारी मुबारकबाद। और भगवान करे कि वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़िंदगी में तरक्की करते रहे। फिलहाल इंजॉय करिए अपने गाने को।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 3:28 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और आधे घंटे हैं। और फरमाइशों की बात करें तो काफ़ी सारे फरमाइश है और आधे घंटे में तो सारे के सारे पूरा नहीं हो सकते। फिलहाल यहाँ आगे मैसेज है और मैसेज लिख रहे कि हेलो मैम, अनीश यादव विलेज दुमरा यदवंशी टोला सिवान बिहार से, और आरजे सोनी मैम जी लाइव शो में हेलो गोपालगंज आज के हमारे शो चटर पटर का सवाल वो है। वो कौन सी चीज़ है जो बहुत महंगी होती है जिसपे आप सोने की अलमारी में बंद करके रखना चाहते हैं लेकिन वो आपके पास टिकती नहीं? पिंटू तुरंत फ़ोन करके। मैम वो और कुछ नहीं, आपकी सुरीली आवाज़ है और हमारे मोबाइल का 349 रुपये वाला इंटरनेट डेटा है जो रिचार्ज कराते ही कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और मैसेज के साथ है अनीश यादव जी दुमरा यदवंशी टोला सिवान से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शो में जुड़े बने रहिए साथ में। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि धन्यवाद सोनी मैडम जी हमारा गाना सुनाने के लिए और बस गाना बजाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि गम का समुंदर मिले तो डूब मत जाना कभी, गम का समंदर मिले तो डूब मत जाना कभी, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना कभी, और कभी अकेला महसूस हो जिंदगी के सफ़र में तो ये दोस्त जिंदा है ये कभी भूल मत जाना मैम। ओहो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपको। और आगे लिखते हैं कि तुझे देखने को ये दिल तरसता है, तुझे देखने को ये दिल तरसता है, एक तेरे ही इंतजार में तड़पता है, कैसे समझाऊं अपने इस नदान दिल को जो मेरा होकर भी सिर्फ आपके लिए धड़कता है। है क्या बात है और कहां से निकल रही है इतनी प्यारी प्यारी शायरी। और मैसेज करने वाले पाजी यूपी चौहान से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है विनय कुमार जुड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से और लिख रहे हैं कि भोजपुरी सॉन्ग सुनना है और बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। एक बार गाना कंफर्म करिए कि गाना ये सही है कि नहीं, क्योंकि ये गाना हम सुने हुए नहीं हैं इसलिए, और कंफर्म करके बताइए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है और रितेश पांडे की आवाज़ में गाने की फरमाइश है तो भैया अपना नाम पता मेंशन करिए हम कितनी बार बोले हैं। और यहाँ रुद्रांश कुमार है ये भी लिख रहे हैं कि मेरे गाने की फरमाइश प्ले करिए। बिल्कुल आपकी बारी आते ही हम प्ले कर रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार करिए। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि कागज़ों को एक साथ जोड़े रखने वाली पीन ही कागज़ों को चुभती है, उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। बिल्कुल सही। और लिखते हैं कि कोई आने वाला है उनकी तैयारी चल रही है। हो और मैसेज करने वाले हैं संदीप कुमार जी हैदराबाद से तो भैया मिठाई तो मुझे चाहिए आने वाले हैं तो, और ज़रूर भिजवाइएगा क्योंकि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और बताइएगा ज़रूर कि कब आ रहे हैं। और आगे यहाँ मैसेज है पागल बनेबे, बिल्कुल तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका मिश्र कुमार जी मोतिहारी जिला से, तो एंजॉय करिए गाने को पागल बनेबे खेसारी लाल की आवाज़ में रेडियो रिमझिम 90.4।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं पागल बने बे गाने की फरमाइश है मिस्टर कुमार जी की मोतिहारी जिला से और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो संजय यादव जी है दुबई से लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा भाई के नाइस सॉन्ग मैडम जी जी हाँ बिल्कुल और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर इसको घाटा कहूँ तो अच्छा इसे घाटा कहूँ ये तो घटाओं को क्या कहूँ और मैसेज के साथ है अजय जी अयोध्या से और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ और यहाँ फरमाइश से काफ़ी सारे हैं और यहाँ मनोरमा जी के लिए लाइन पहुँच रहा है तो मनोरमा जी शामिल करिए आपके लिए कुछ आया है

0: कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है।
1: क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि पागल बनेबे कारे पत्थर की, पागल बनेबे का वेरी नाइस सॉन्ग और मैसेज के साथ है मनीष जाक फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से। और बिना देरी की अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमरो गनवा बा बजा दी और काम धंधा छोड़ के सुना था नी मेघनाथ भाई, तो बिल्कुल अगला गाना राउर प्ले कर दनी। और अगली फरमाइश है जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। लिखने वाले ने लिख डाला,

की बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। और आगे एक और हम मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही खूब आज शो में, आज का शो में जलवा है। ओहो, और मैसेज के साथ है नाम है इनका। अमरजीत शुक्ला दुबई से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और शो समाप्ति के टाइम में जुड़े, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि 12 बजे से जुड़े हुए हैं और नंबर हमारा अभी तक नहीं आया, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको राजा हिंदुस्तानी का कौन सा, निरहुआ हिंदुस्तानी से कौन सा गाना सुनना है, गाना कन्फर्म करिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी राम कुमार जी हैं बालाघाट MP से। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम गजब के सिंगिंग है आज, मज़ा आ गया, बिल्कुल एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। धनेश मिश्रा जी।

0: ये गाना पूरे 8 मिनट प्लस का गाना है, तो आगे का गाना हम नहीं बजा सकते, माफ करिएगा। और बढ़ेंगे ब्रेक के तरफ, फिर मिलते हैं आप सभी से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और बिल्कुल यहाँ मैसेज है लिखे कि आप मेरा गाना नहीं बजा रहे हैं, कम से कम मैसेज शामिल करिए। और मैसेज तो हम आपका शामिल कर ही दिए हैं। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार जी बालाघाट एमपी से, और लिख रहे हैं कह रहे मैडम जी आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर, लेकिन हम पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप शो में नहीं रहते हैं तो मज़ा नहीं आता। और ये सारे मैसेज हम आपका शामिल कर चुके हैं। और फरमाइश है निरहुआ हिंदुस्तानी से, तो बिल्कुल प्रे करने की पूरी कोशिश तो है कि हम सबकी फरमाइश से प्रे कर दें, लेकिन अब समय के अनुसार फरमाइशें काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सबकी फरमाइशें नहीं प्ले हो पाती है। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अर्ज किया है पीता शराब है और कहता नशा खराब है, खुद सुधरता नहीं और कहता कि किस्मत खराब है। यहाँ हर आदमी की यही कहानी है मेरे दोस्त, अच्छा खुद नहीं और बोलता जमाना खराब है। बिल्कुल सही और मैसेज के साथ है अनिल जी छोटपुर से। और आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैसेज कहीं कहीं नहीं है, आप कहीं गुस्सा हो जाए तो मैम। बिल्कुल हम गुस्सा नहीं की हो सका था और हम कहे गुस्सा होके। और मैसेज के साथ अमरजीत शुक्ला जी वानी दुबई से, और हम कोई से गुस्सा ना होनी, बस कुछ फालतू अपशब्द बात ना होके की चाहिए, बाकी सब बढ़िया बाटे, रोवा शिकायत कर सकता नहीं, अधिकार बटे राउर शिकायत करके अगर हम गाना नहीं की बजाओ तो सब कुछ बोले। लेकिन कुछ लोग बात है कि अगर अपशब्द बोला था तब आदमी गुस्सा होला, लेकिन ऐसे हम केहू पर गुस्सा ना होनी। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं कि बिल्कुल फरमाइश है, कोशिश है। और फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करेंगे, सुनेंगे अगली फरमाइश को। तो सॉरी मनोरमा जी आप बात करिए और अगली फरमाइश को सुनिए।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: सोनी
0: जी भी सुन रही है और यही है, बोलिए बिंदल जी बात कर रहे हैं ना।
1: क्या हो गया कि आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं?
0: ऐसा बात नहीं है, हम सबका कॉल रिसीव कर रहे हैं, समय पे नहीं आ रहा, अभी आया तो रिसीव किए ना।
1: देख लीजिए कितना कॉल किए हैं।
0: जी जी मुझे सब दिख रहा है कितना कॉल आया है, लेकिन जब रिसीव करने जा रहे हैं उस टाइम में नहीं आ रहा है, इसके लिए
1: नाराज हो गई
0: है? नहीं नहीं नाराज बिल्कुल नहीं हुए हैं, किसी से नाराज नहीं है।
1: तो गाना हम सोचते कॉल करते करते गाना जो याद किए थे वो फोन पर जाता है।
0: ओहो कोई नहीं, फिर से याद कर लीजिए, और ऐसे भूल जाते हैं तो कहीं लिख के रख लीजिए।
1: गाना हमको सुना दीजिए, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करेंगे।
0: जी बिल्कुल, और डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी जैसे लोग सुनने वाले हैं सब लोग के साथ।
0: तो प्ले कर दिए आपका गाना।
1: हम जिंदा शर्मा बोल रहे हैं।
0: जी जी पहचान लिए हैं।
1: ठीक
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल पे, एंजॉय करिए गाने को।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं बिमलेश जी की फरमाइश थी कॉल के माध्यम से और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कहाँ ऐसा प्यार होता है, 6 साल के प्यार लोग पल भर में भूल जाते हैं। ओहो, और अमरजीत शुक्ला जी हैं दुबई से। जी हाँ बिल्कुल, और अभी भी है, कहीं कहीं है, सब नहीं है, सब एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो धरती का संतुलन है वही बिगड़ जाएगा। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, अब निर्भर करता है किसको कैसा इंसान मिलता है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी सॉन्ग है बजा दीजिए बिल्कुल। और अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, शाही जी जुड़े हुए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिम सिम 90.4 FM पर और आरजू की राहों में गाने की फरमाइश से उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज़ में। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिम सिम 90.4 FM पर, प्ले कर दें आपके गाने।

और यहाँ विनोद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और पूरी फैमिली के साथ जुड़े हुए कोलकाता से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और काफी देर बाद शो में जुड़े, शो समाप्ति का समय हो गया, माफ करिएगा हम आपकी यानी कि फरमाइश जो है आज भी नहीं प्ले कर पाएंगे। और आपको शो में जुड़ना है, 12 बजे से शो शुरू होता है, आप उस बीच में जुड़िए, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी यानी कि फरमाइश जो है जरूर प्ले करें। और जिनकी भी फरमाइश प्ले नहीं हो रही है नाराज नहीं होइए, और हमारे भी समस्या को समझिए आप, क्योंकि इतना सारा फरमाइश रहता है, सबकी फरमाइश तो नहीं प्ले हो सकता, किसी ना किसी का तो छूटेगा ही। और ऐसा तो नहीं है कि आपकी पूरी फरमाइश प्ले नहीं हो पाती है, आज नहीं तो कल कर देंगे हम आपकी फरमाइश, तो बिल्कुल नाराज नहीं होइए। और यहाँ काफ़ी सारा मैसेज है रोने वाले, तो ऐसा इमोजी नहीं भेजिए आप लोग, और खुशी खुशी सुनिए और अगले शो में फिर से जुड़िए और पूरी कोशिश है हम आपकी यानी कि फरमाइश प्ले करें। फिलहाल इंजॉय करिए शाहिद जी की फरमाइश।

और यहाँ मैसेज है, नई मंशारी है जान तरह से लिख रहे हैं कि इस गाने से हमें राहत इंदौरी साहब की याद आती है। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल तोड़ दिया आपने मेरा। हो बिल्कुल नहीं, और ऐसा मत सोचिए दिल नहीं तोड़े हैं। कल बिल्कुल हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और अजय जी है अयोध्या से, तो नाराज नहीं हुई है बिल्कुल, और माफ़ कर दीजिए हमें। और ऐसा नहीं कहिए कि हम दिल तोड़ दिए हैं, कि हम किसी का दिल नहीं तोड़ सकते हैं।

0: और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए मुझे आज की शो से जाने की इजाज़त। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि आपका ऐप आपका काम नहीं कर रहा है, तो एक बार उसको काट के फिर से ऑन करिए। और यहाँ ऐप बिल्कुल चालू है। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका जयवीर कुमार जी। तो ऐप बिल्कुल चल रहा है और आप एक बार काट के फिर से ऑन करिए, शायद चालू हो जाए। और काफ़ी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं। बाय बाय, बिल्कुल बाय बाय, फिर मिलेंगे आप सभी से अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। नमस्कार।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
1: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
1: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
1: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
16: रेडियो रिमझिम,
15: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971660002।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

प्राणी यह सांसारिक जीवन में उलझ करके काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पड़ के असली धन के गंवा देता और अंतिम समय में पछतावता। कैसे बड़ा ही सुंदर कल्पना बा कि सब धन सियारा खाइले अरे लूटल।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल से।

पड़े उहो तो हाजिर बा हमार जान ले लो। मोहब्बत में भरोसा करो हम तुहार दीवाना है। मोहब्बत में भरोसा करो अरे हम तुहार दीवाना है। तुहार जब दिल करे जहाँ चाहे रसिया।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: मांजा।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97707065575।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434। 6200042434।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225667 या 97714861464।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: उत्तर बिहार का गौरव,
5: सारण प्रमंडल की शान,
4: गोपालगंज की धड़कन
5: और अपने भाषा की पहचान
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: बाकी ना हो बट आगे के पता नहीं।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
4: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते,
6: भारती जी बोल रही ना आप? आपका नाम सोता हूँ मैं, गोपालो जगराम का कपासा जिला गुना से बोल रहा हूँ मैडम।
5: कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है मैडम जी, अभी तो बारिश हो रही है।
5: अच्छा जी, आपकी तरफ बारिश हो रही है, कभी हमारे तरफ भी भेजिए।
6: आपके उधर नहीं हुई क्या बिहार में बारिश?
5: नहीं हुआ था परसों, उसके बाद कहाँ हुआ,
6: कल हुई थी हमारे उधर।
5: इधर और भी मौसम गर्म हो गया है,
6: यहाँ तो अभी ठंडी है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है थोड़ी।
5: चलिए जी तो बढ़िया है।
6: कैसी हो आप?
5: हम तो ठीक है।
6: जी, गाना सुनना है?
5: बता दीजिए।
6: सुपर स्टार फिल्म का सुनना है, कुमार सानुअल का एक निकी आवाज में गाना। गाने के बोल बताऊं, चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है, ये वाला गाना है।
5: ओके, और सॉन्ग किसी?
6: डेडिकेट है ना जी, हमारे ज्योति साहू जी है, मकसूद अनवर, सुनील साहू जी है, मंगीलाल चंदेल जी है, इनके लिए डेडिकेट और आपके लिए भी है मैडम।
5: ओके,
6: पहले कर दीजिए।
5: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम
0: 90.4। नमस्कार
1: मैडम। नमस्कार।
0: सुना दी आज भी।
1: नाम बता दी पहले।
0: नाम परमात्मा मौत है। काला मोटी से हाल चाल ठीक बा?
1: ठीक बा।
0: धूप कैसे बा? गोपाल
1: धूप होता कब छाव होता है ऐसे ही आवाज जाता होता
0: ऐसा ही तो बोलिए पता होता कबो छाया होता कबो धूप होता। बारिश और से भैया बारिश होते नहीं थे जान जाते।
1: गर्मी भी तो ऐसे ही बा।
0: गर्मी बहुत बा, बहुत गर्मी 35 कैंडल रहता है। सुनवा दी आज अपने पसंद के बजाय
1: अच्छा तो अपना पसंद
0: पसंद सही
1: था है। रहो लोग इनका अच्छा बताए नहीं लोग
0: बताओ ये ना तेरे को कुछ भी नहीं करे तो रहो अपने पसंद के बजाय
1: बुझाई का है ना बताएं तब ना
0: ना पानी भी खराब गाना बाज गाना बाज भी करता
1: ना ऐसा कोनो बात नहीं है। अब
0: ना ना तो कोनो बात नहीं है तो रवे बजा दे रवे बजा दे तीन बार तो रवे अपने पसंद के बजाओ आज भी अपने पसंद के बजा दे
1: ना आज रवे बता दे
0: सावन के महीने में बोले हुए गाना खूब बोल दो गाना बढ़िया सावन पे सावन के महीने चलते
1: पूरी में हिंदी में
0: भोजपुरी में
1: और गाना क्या सुनाइबो कर
0: रहे हैं सब लोग बेटिया से बारे में देना है इनका नाम भगत सिंह और बहुत लोग वीरेंद्र वीरेंद्र पर देना सब अपने मुजफ्फरपुर से हम लोग सुनने लगे रेडमी में ऑनलाइन बहुत लोग भाई से सुने वाला।
1: चलिए तब ठीक बात गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजी 90.4 FM में।
18: हेलो नमस्ते दी।
17: नमस्ते।
18: राधे राधे।
17: राधे राधे।
18: और कैसी हैं आप?
17: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
18: बिल्कुल मस्त हूँ। और आप बताएं, आपकी नाम क्या है?
17: मेरा नाम भारती है। और आपका?
18: जी मेरा नाम है रानी।
17: और कहाँ से हैं
18: आप? जी मैं हरखुआ से बात कर रही हूँ आपसे। और आपकी मैं आवाज बड़ी दिनों से सुन रही थी, बाकी नाम में कंफ्यूजन थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपसे बात करूँ वगैरह सोची कि आज मैं हर हाल में आपसे बात जरूर करूंगी और आवाज सुनकर तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा था। ये सोच रही थी कब आपसे बात हो जाओगी, मुझे थोड़ी सी टाइम दिक्कत था मैं फाइनली आ जाऊँ और नाम में मैं बहुत कंफ्यूजन थी। मैं सोच रही थी आपकी भारती नाम है कि आरती नाम है, वही मैंने सोचा आज मैं दोनों क्लियर करूंगी आपसे बात करके। मैंने एक सुना था, एक लिस्नर पूछ रहे थे आपसे बात किए थे तो मैंने कंफ्यूजन थी कि फिर दी के नाम भारती है कि आरती है, तो मैंने सोचा था दिव्या दी से तो बात है, सनी दी से बात हुआ है, बहुत पहले बात हुआ है, अभी मैं बहुत कम बात करती हूँ, मैं बहुत पुरानी लिस्नर हूँ आप लोग का चैनल का, मैं बात नहीं करती हूँ, मगर आपकी आवाज सुनी थी तो मुझे अंदर से खोता है ना कि कोई की बात अंदर से होता है, काश मेरे से बात भी हो जाता तो मेरा खुशी ऐसा तो आपको पता चलता होगा। आपकी आवाज बहुत प्यारी है दी और उससे ज्यादा आपकी नाम बहुत अच्छी है।
14: अच्छा जी, धन्यवाद
18: जी जी। और बताएं आपने नाश्ता वास्ता किया है कि नहीं?
14: हाँ हमने नाश्ता कर लिया, और आपने?
18: जी जी जी, हम लोग भी हो गया है और मौसम थोड़ा सा दुष्काल कर रहा है, बारिश एक दिन पूरा जम के हुआ था जी, और काफी गर्मी से परेशान थे तो थोड़ा बहुत राहत मिला है, फिर वही हाल है,
14: लेकिन थोड़ा बहुत मतलब धूप कभी हो रहा है कभी छाँव हो रहा है तो उससे थोड़ा राहत मिल रहा है।
18: वही है दोनों मिला के।
14: तो घर परिवार में सब कैसे हैं?
18: घर परिवार में सब कोई अच्छा है, और मैं दिक्कत की बात करूँ तो थोड़ा मेरे माँ की तबीयत खराब है, तो मैं इसीलिए आप लोग सुनती थी बाकी मैं जुड़ती थी नहीं जी। और मेरी माँ की थोड़ी भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनकी डॉक्टर बोला है ऑपरेशन करने को, तो हम लोग काफी दिन से परेशान है दी, तो अभी तो हुआ नहीं है, उनकी दवा चल रहा है और थोड़ा सा कमजोर भी है तो थोड़ा रिक्शी वाला कार है दी,
14: तो ख्याल रखिएगा माँ का आपने।
18: हाँ और हाँ माँ तो निकले में है और हम लोग घर पे है और मैं बड़ी हूँ तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, फिलहाल मैं थी मैं माँ के पास लेकिन मुझे यहाँ भेज दिया लोग, और
14: अभी ठीक है ना?
18: हाँ ठीक है, और अभी आप लोग की दुआ की जरूरी है कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी, और उनकी तो जो डॉक्टर बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो देखिए आप नहीं मिल लगे हैं लोग, और मैं इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा था, बाकी आपकी मैं हमेशा से सुनती थी, लेकिन मैं सोचा आज तो थोड़ा सा टाइम आप लोग के लिए निकालूंगी आपसे बात करने के लिए।
14: चलिए ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
18: और जी मुझे सॉन्ग सुना है मेरी माई के ऊपर है, एक लाडला मूवी का अनिल कपूर जी का, तो वही सॉन्ग, उसमें एक सॉन्ग है तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के जी, मुझे
14: सॉन्ग माँ को ही डेडिकेट है ना,
18: और मेरी माँ के लिए और आपके लिए और सोहे दी के लिए और दिव्या दी के लिए और बाकी जितने रेडियो की मेरी रेडियो दोस्त है उन सभी को रानी की तरफ से है, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा दी, और अपने बीच बीच में पानी पीते रहिए, आपकी बात बड़ी सेट है।
14: जी मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है
18: जी जी, तो ये गाना उन्हीं के लिए बजाइए, और थोड़ी सी आप लोग को दुआ चाहिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए, हम लोग तो काफी दिन
14: है कि माँ आपकी बहुत जल्द ठीक हो जाए।
18: जी जी जी, मुझे यही चाहिए, और मैं काफी दिन से माँ के रिलेटिव से हम लोग परेशान है, पूरा फैमिली परेशान है दी, और अभी उनकी इलाज हो रहा है, उनकी जो मेन काम है दी वो भी नुभागती है, जो उनको ऑपरेशन करना है, थोड़ा उनकी देखिए जब बात माँ करते हैं हम लोग अंदर, मैं उस टाइम से हंस कर बात की आपको टाटा रखकर, थोड़ी सी माँ की बात आता है तो पानी टूट जाता है दी।
14: माँ तो माँ होती है ना।
18: हाँ जी जी, और बोला जाता है, और देखिए घर में सब कोई है यहाँ पर, बाकी नहीं लग रहा है कि घर कोई है, हम लोग इस रूम में से उस रूम में इस रूम से, और थोड़ा बहुत आप लोगों को सुनते हैं तो थोड़ा सा मन हल्का होता है दी, और ना तो थोड़ा सा तो मियाँ थोड़ा टेंशन हो ही जाता है,
14: तभी आपके साथ है।
18: जी जी, और इतने साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया आपको, और आप बहुत अच्छी है, बात तो बात करती है सभी लिस्नर से तो अच्छा लगता है।
14: जी जी धन्यवाद, चलिए फिर बातें होंगी।
18: जी जी,
14: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेमिशन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसे हैं मैम?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: थोड़ा सा धूप गर्मी वगैरह सब हो रही है ना, थोड़ा तबीयत खराब हो गया मैम।
0: अच्छा जी, क्या हो गया है?
1: थोड़ा बदन वगैरह सब दर्द कर रहा है, धूप हो जाता है कभी, बहुत गर्मी लगती है, थोड़ी बारिश होती है, इसी वजह से।
0: तो धूप से थोड़ा बच के रहिए। और
1: धूप से कैसे बचा जाए मैम? ड्यूटी पर जाना पड़ता है, धूप के टाइम छुट्टी होती है 3 बजे, धूप में ही निकलना पड़ता है, विद्यालय बंद हो जाती है ना।
0: तो थोड़ा कुछ गमछी वगैरह ओढ़ के जाइए आइए।
1: वो तो रहता है, टॉवेल रहता है, गमछी वगैरह रहता है साथ में, थर्मस वगैरह तो रहता ही है साथ में।
0: कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगा।
1: जी जी, ऐसे कोई विशेष ही नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऐसी तबीयत खराब है। आज सुना दीजिए मैम, आया सावन झूमके का गाना, टाइटल सॉन्ग।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रिमझिम के पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबों को सुनाना चाहता हूँ।
0: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello, hello, hello, hello, hello.
12: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: नमस्ते,
13: क्या हालचाल है आपका?
14: अच्छा, अपना बताइए कैसा है?
13: हमारा भी ठीक है,
14: पूजा का काम है। आपको अच्छा रहा ये कल हम लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है?
13: हेलो, हाँ बोलिए।
14: बोलते हैं आप अच्छा रहेंगे, कुछ ख्याल रहेंगे तब तो हमारा रिकॉर्डिंग चलेगा।
13: जी जी, हम तो अच्छे ही रहते हैं, भगवान की कृपा है जो अच्छे रहते हैं, और आप लोगों की भी कृपा है।
14: नाश्ता हो गया?
13: हाँ हाँ, नाश्ता हो गया। और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: गाना सुना मोहब्बत फिल्म का।
13: जी हाँ बोलिए।
14: बोला है मोहब्बत फिल्म का गाना सुना दीजिए।
13: और गाना कौन सा है?
14: गाना है आके गले से लगा लो।
13: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
14: जी, आपको जितना रेडियो आप जो सब सुनता है, दोस्त सब सुनते हैं सबके साथ।
13: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
14: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल?
1: तो हालचाल तो अच्छा है, आजकल ट्यूमर का काम सब चल रहा है। उसी में लगे हैं कि एक गाना का रिक्वेस्ट कर ले।
0: तो बता दीजिए।
1: वो गाना है लता मंगेशकर का, जाना जाना है कहीं दूर चले जाना है, ऐसा गाना है। सिंगल लता मंगेशकर का गाना है
0: जी।
1: जाना जाना है कहीं दूर जाना है, ऐसा ही गाना है। तो उसी गानों को हम सुनना चाहते हैं ना। अगली बार तो अच्छा आइए। आप जो सोनी जी प्रोग्राम देती हैं 1 बजे से, वो आप नहीं दे सकती हैं क्या?
0: आज तो बैठना है।
1: आज बैठना है। तो उसका नंबर मालूम है क्योंकि हम सोच रहे हैं तो उसका नंबर लगाया जाए।
0: उसका नंबर तो मुझे नहीं मालूम है, सोनी जी से पूछना पड़ेगा।
1: अच्छा तो छोड़िए तुम, क्योंकि नंबर हम अच्छा देखेंगे। 1 बजे से आप बैठिए ना, तो आज सुनेंगे आपका खासकर प्रोग्राम। तो उसका रिहर्सल कर लिए?
0: नहीं, अब वो देखेंगे कैसे बोल रहे हैं, उन्हीं से सीखेंगे।
1: सीखिए, उसमें भी आप आजमाइश कीजिए, क्योंकि ये तो प्रोग्राम चलाना तो आपको इजी हो गया है
0: जी।
1: तो ऐसा ऐसा प्रोग्राम आप डेवलप करते रहिए। तो उसमें हम भी चाहते हैं कि आप भी कभी आए 1 बजे वाले पे,
0: है ना? बिल्कुल आएंगे।
1: तो क्या बोलता है वो, हेलो
0: योर
1: वॉइस योर चॉइस। तो उसी को हम आपको प्रोग्राम से सुनना चाहते हैं, आप इतने दिनों से हैं इसके लिए। तो आज सुनेंगे गौर करके। तो ये गाना में तो सुनाइएगा।
0: बिल्कुल सुना दे।
1: वो तो सोनी जी पानी पीपी के वो अपना प्रोग्राम देती हैं वो।
0: इतना बोलना ही पड़ता है कि प्यास लग जाएगा।
1: हाँ प्यास लग जाता है, भूख लग जाएगा। और कुछ रही थी, आप पानी पी है मैडम? पानी पी लीजिए, खाना खाई है, भूख तो लगा है पर अभी नहीं खाए, खा लेंगे प्रोग्राम के बाद। इसी इतना मजा आता है सुनने में उनका, सोनी जी का। और चुटिला जो आवाज होता है ना, है ना, तो सुनने में बड़ी मजा लगता है। आपके सोनी जी का आवाज सुनने में मजा लगता है। गाना वाला छोड़िए बाद में जाए,
0: है ना, एकदम पूरे स्पीड में बोलती है,
1: बॉडी स्पीड में, मतलब उसका स्पीड का शौक कोई कायल हो गया। उसमें भी गाना जो है साथ में गाती है ना, है ना, गुनगुनाती रहती है, वो भी अच्छा लगता है। आप भी वैसा प्रोग्राम दीजिए मैडम, हम लोग को भी अच्छा लगे, है ना, और ऊपर वाला चाहे तो वैसा ही कीजिए। ठीक है मैडम, तो
0: ठीक है फिर गाना प्ले कर रहे हैं
1: जी, सुनाइए गाना को।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87894-18744।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो।
13: नमस्कार मैडम।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
13: हम रमान गुप्ता पेनुला खास से बोल रहे हैं।
12: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
13: हाल चाल बल्लेवाही कराओ चली, बल्लेवाही कराओ चली, या खेत में बन रोपनी होता।
12: अच्छा,
13: घाम बड़ा उगल बा, घाम बड़ा उगल बा, रोपनी होता सरकार।
12: घाम तो उगले ही बाबे,
13: घाम तो भर बाकी एकदम घाम, रोपनी कराओ चली, सामने गिरा आदमी है, भी बाकी धान ना जरे के चाहिए।
12: तो पानी कब
13: पानी चला के अल्लेवाही होता धान रोपवाओ तनी से गीत सुने को सरकार
12: बता दी कौन सा गीत सुने के बाद
13: गुलाम अली के कोई दर्द भरा गजल गुलाम अली का कोई दर्द भरा गजल
12: गजल आप नहीं बताइएगा कौन सा मतलब गजल
13: कोई गुलाम अली का कोई गजल हो गुलाम अली का कोई गजल हो सुनवाइएगा कोई गजल गुलाम अली का
12: और गजल किसी को सुनाना भी है
13: सुनवाएंगे शाहबू चक्कर वाले और गुडू चक्कर वाले सतंदर है सतंदर हमारे गांव का सतंदर नाती है सुनाए भाव
12: चले ठीक
13: है मैडम नमस्कार नमस्कार
12: गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे सबके साथ
13: नमस्कार नमस्कार
12: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार।
0: और सब?
1: और सब बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: बस चाय पी रहे थे, टाइम हो गया तो।
1: इतनी गर्मी में चाय?
0: तो अब लीजिए, काम करते हैं तो चाय तो दो टाइम चाहिए ही।
1: नहीं मतलब गर्मी है इसलिए पूछ लिए।
0: नहीं, गर्मी में तो गर्म को काटता है। काम करने वाला आदमी चाय तो जरूर पिएगा। वो टाइम 11 बजे हो गया और 4 बजे हो गया, चाय तो चाहिए।
1: जी जी, चलिए, चाय राहत देता है थोड़ा बहुत।
0: राहत तो देता है, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं देगा लेकिन ये तो जरूर देता है।
1: हाँ, ये भी उतना तो नहीं पीना चाहिए।
0: क्या आपसे बताए, काम कर रहे हैं तो दो चाय तो चाहिए ही चाहिए।
1: हाँ हाँ, वो तो चाहिए ही।
0: एक बात और है कि अगर चाय पी रहे हैं तो आपसे बात भी कर तो कर लिए, 2 मिनट आराम भी तो मिल गया है कि नहीं?
1: बढ़िया है, तब तो रोज चाय पिए कीजिए।
0: हाँ, तो रोज की टाइम है ये। तो आज उसी टाइम ही क्या आया है कि आपके पास कॉल कर लिया।
1: तब तो बढ़िया।
0: और सब
1: ठीक है?
0: नाश्ता पानी हो गया?
1: हाँ, हमारा हो गया है।
0: बारिश वारिश बंद करा दिए?
1: नहीं, होगा बारिश अभी तो, वैसे ही कभी कभी मौसम बना रहा है, हो जाए तो अच्छा है।
0: ये किसी हाथ में है? कहने के लिए सबने कहते हैं लेकिन किसी के हाथ में है ये। चलिए ठीक, अब आज एक गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
0: नील कमल सिंह का लुट गई नहीं बर्बाद हो गई।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और सोनी जी को, और जिसने मेरे नाम से जानने वाले हैं सब सुन लेंगे। मैं गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। चलिए फिर प्ले कीजिए,
1: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
13: कॉल करे 87-894-18-744।
14: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
14: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
17: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4।
19: नमस्कार, कैसे हैं भारती?
1: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
19: भारती में बोल रहे हैं ना? बढ़िया।
1: हाँ हाँ बढ़िया है।
19: आपसे इंतजार तो हम बुधवार से ही कर रहे हैं कि कब आपसे बात होगी।
1: जी
19: बुधवार से आपसे इंतजार कर रहे हैं बात करने के लिए आपसे।
1: अच्छा जी, क्या हो गया है बताइए?
19: बस उस दिन मतलब फरमाइश पूरा हो गया था, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए मैम।
18: अच्छा जी,
19: तो गाने की फरमाइश कर दे अपना गवाते हुए, और एक बात बोलेंगे।
18: जी बोलिए।
19: जी मैम, और एक चीज और बहुत अच्छा लगता है कि रिपीट चलता है सुबह में, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डायरेक्टर सर को थैंक यू बोलते हैं, बोलिएगा।
18: जी चलिए, आपको अच्छा लगता है खुशी हुई जानकर।
19: जी मैम, वक्त करना गवाते हुए गाने की फरमाइश करें।
18: बिल्कुल,
19: गाने फरमाइश है चंद्र सितारे सिंह गाना है ना, उदित नारायण का।
18: कौन सा?

0: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगजीम 90.4 FM में।
0: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर MP से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे। इंतजार अभी खत्म हो गया मैम, फोन भी लग गया।
1: जी जी आपका पहला ही कॉल है।
0: जी जी जी ट्राई कर रहे थे, बाकी फोन लग गया।
1: चलिए बढ़िया है। तो और सब बताइए, और सब ठीक है ना?
0: हाँ जी मैम सब ठीक है। बस आपका यहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम कभी धूप कभी छाँव वैसे ही हो रहा है।
0: जी जी जी आप सोनी मैम बात कर रहे हैं?
1: नहीं
0: भारती मैम। जी मैम तो आज ये करवाई है,
1: बता दीजिए।
0: फिल्म बलमा और गाने का बोल है मैम ये मौसम भी गया। अब सुनवाएंगे कितने रेडियो दिन जिन दो लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर X सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
11: क्या कर रहे थे?
10: हेलो,
11: क्या हाल है?
10: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
11: मेरा भी ठीक है।
10: आवाज आपको बहुत स्लो आ रहा है।
11: मेरा भी ठीक है।
10: अच्छा, चलिए ठीक होना चाहिए।
11: और सब बताइए, तबियत सही नहीं है क्या सोनी मैम जी?
10: क्या
11: तबियत सही नहीं है क्या? आपकी आवाज बदली बदली सी है।
10: हम सोनी थोड़ी बोल रहे हैं।
11: हाँ
10: हम भारती बोल रहे हैं।
11: क्या?
10: मेरा नाम भारती है।
11: अच्छा भारती मैम जी। और सब बताइए क्या तबियत है आपका?
10: हम तो ठीक है, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं?
11: हम लोग भी ठीक है।
10: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा?
11: हम सुनना है भरोसा कर लो तुम साथ में आएंगे।
10: अच्छा और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
11: सबसे पहले आपको सोनी मैम को, सोनी सर को, सुनने वाली और लिसनर।
10: ओके नाम बता दीजिएगा अपना।
11: ताजिया नादर।
10: ओके तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीन 90.4 FM।

0: हेलो जी, नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल श्रोता संग्राम कोहरामन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब। संजय कुमार साहब बात कर रहे हैं
1: जी। जी, क्या हाल चाल है
0: जी? मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप सुनिए, आप कैसी हैं? आपको रेडियो रिमझिम का फोन परिवार कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है, आपकी दुआ से।
0: चलिए, आपकी दुआ से हम भी ठीक है, घर परिवार भी चलता है। अब बाकी थोड़ा लुकाछिपी चल रहा है, कभी बारिश कभी गर्मी। मौसम बताइए, हमारे तरफ तो गर्मी है लेकिन हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है।
1: यहाँ पे भी यही हाल है,
0: धूप कहता है थोड़ा, कभी कभी छा जा रहा है, कभी कभी गरम लगता है। इसी विषय को लेकर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा गर्मी वाला गाना सुन लिया है। क्या गर्मी से गर्मी आ रहा है, दुकान कटेगा। तो इसीलिए हम लोग एक गाना रखे है, जैसे की दोपहरी नेपाल ऐसे करके है। वो वैसे तो लेडीज के आवाज में तो हमें गाना नहीं, लेकिन इसमें कुमार शायद है, इसी सुना दीजिए। जेठ के दोपहरी में पाँव जली है, फिर ये पाँव जली है।
1: ओके, और ये गाना किसी को गाना
0: भी गाना? मतलब सबसे पहले आपको रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार को और दोस्त गया से खाना शर्मा सागर जी, महेश उत्तम कुमार जी, राम सबको सुहाज सबको सुहाज अजीत कुमार भरपूर जमशेद मरेश स्वामी दीपक दास उदय भन ठाकरे जुमना साहब सबको सुहा राम मदन राम राजेंद्र यादव भारती संतलाल गौरव हमारे नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्तों, विशेष करके मोहम्मद सलाद अंसारी है मधुबलिया को विशेष करके करते हुए अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार
1: जी। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: धन्यवाद।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198869793।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
0: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
11: नमस्ते दीदी।
10: नमस्ते,
11: क्या हाल है?
10: बढ़िया, आप अपना बता दी।
11: ठीक है, क्या हाल है?
10: कुछ ना, बस रहो, बस बात होता अभी। तो आप नाम बता दी और कहाँ से?
11: कृष्णा कुमारी, तीर्थ नारायण।
10: तो क्या होता
11: है?
10: खाना वाना हो गई?
11: हाँ, खाना ना हो गई।
10: मौसम कैसन बा?
11: धूप तो निकल हुआ है।
10: पीने की धूप के निकल फिर बता दी, कौन से गाना सुने?
11: कॉमन सिंह की बजाय दी कौनो भी नहीं कॉमन।
10: अच्छा, जैसे कि सैड सॉन्ग या फिर रोमांटिक या फिर कैसे?
11: कौनो भी।
10: अच्छा, और गाना कैसे सुनवाई तुम चाहते
11: हैं? सोनी मैम के भाई यहाँ
10: सुन रहे। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो जी,
1: हेलो। हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: हेलो
0: जी,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
1: क्या हाल है?
0: बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: चलिए, अच्छी की बात है। ये बताइए आपका नाम?
1: बोलिए
0: जी, आपका नाम और कहाँ से?
1: नहीं पहचान रहे क्या?
0: नहीं,
1: इतना दिन भूल जाती है, खाली है। बुधवार को कॉल नहीं किया तभी भूल जा रहे हैं आप।
0: अरे नहीं नहीं मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
1: अच्छा
0: जी,
1: भारती कहाँ से है?
0: भारती का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है ना।
1: तो आप दूसरा जाना है क्या? आपका नाम क्या?
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: मनोरमा, इसलिए तो पहचान है कि भारतीय आवाज सुनने आवाज नहीं आ रहा है। तो छुट्टी लिए हैं क्या?
0: नहीं नहीं इनका शो चल रहा है दूसरा।
1: तो भारतीय शो नहीं चला रही, सोनी सोनी जन चला रही है।
0: दोनों लोग चला रहे हैं लोग।
1: अच्छा, दोनों लोग चला रहे हैं।
0: और बढ़िया है, उधर का मौसम कैसा?
1: मौसम ऐसा ही है, बादल आ रहा है, धूप फिर हो रहा है, फिर बादल आ रहा है। ज्यादा दूर से थोड़ी हूँ, सिवान से हूँ। बढ़हरिया के पास ही है, मेरा मतलब मेरा घर बढ़हरिया में पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा वैसे आप करते क्या हैं?
1: अपना खुद का काम करते हैं, हम लोग कुम्हार हैं, अपना ही काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन वाला।
0: बहुत बढ़िया,
1: हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। पास चार मिल जाए
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना आपको?
1: सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग याद ही नहीं आ रहा है। ये गाना भैया दीजिए, चोरी चोरी वो मेरे पास आया, हिंदी सॉन्ग है।
0: और ये
1: यही सुनना
0: और ये
1: यही सुनना
0: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: सबसे पहले आपको सोनी मैम को, भारती दीदी को, दिव्या मैम थी उसको, कृति मैम को, अवसर सर को, डायरेक्टर सर को, पूरा रेडियो रिंजन को सुनवाना
0: है। चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: जब फोन भी बजती है तो कहते हैं हेलो
9: हेलो हेलो
8: हेलो हेलो हेलो।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
7: हेलो
10: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: जी मैम, मैं विजय दीवाना शंकरबाग पटना से।
7: जी क्या हाल चाल है आपका?
10: ठीक है मैम। तो एक गाना सुनना था मैम।
7: जी बता दीजिए।
10: मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी।
7: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेटेड
10: जी है? जी मैम आपको और हमारे जो ग्रुप में है, राजू जी है, वीरेंद्र जी है, सरोज जी है, मनोज जी है, जितेंद्र है, सभी आदमी बैठ के इंतजार कर रहे हैं आपका शो का एक घंटा। कब सुनने को मिलेगा मैम ये गाना?
7: ये गाना मिलेगा आपको कल मिलेगा सुनने के लिए।
10: अभी सुना दीजिए मैम ये गाना।
7: अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना?
10: ओ मैम,
7: तो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, उसके बाद कल बज जाए।
10: कल कब मिलेगा मैम?
7: कल शाम 5 बजे।
10: कल शाम को आपका शो नहीं आएगा मैम, आ जाएगा ना?
7: जी
10: आपका शो कल आएगा मैम।
7: हाँ जी
10: जी मैम, शाम को 5 से 7 बजे तक आज सुना सकते हैं?
7: जी बिल्कुल
10: जी मैम, थैंक यू,
7: वेलकम। चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: कुलदीप कुमार जंगलिया से।
1: क्या हाल चाल है कुलदीप जी?
0: ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा है?
0: मैम
1: सब खाना वाना हो गया है?
0: ना अभी खाना नहीं हुआ है, स्कूल कल उठेंगे तो खाना खाएंगे, अभी आए थे स्कूल से।
1: अच्छा जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
0: 11th में।
1: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
0: अच्छी चल रही है।
1: ओके, चलिए बढ़िया। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: सुना दीजिए कोको कोलाला।
1: अच्छा, भोजपुरी या फिर हिंदी?
0: भोजपुरी खेसारी लाल का।
1: अच्छा जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मम्मी पापा को, सबसे पहले आपको
1: जी,
0: और आपको पूरा जितने रेडियो के उतने आदमी को।
1: अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिकल जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर महादेव।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
11: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
10: आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
11: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
10: सच कहो से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
11: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
10: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
11: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
10: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
11: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि

0: गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, या फिर समय पर बदल नहीं पाते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते, इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
1: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
0: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
1: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
1: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
0: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
1: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे, और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
1: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो तो जिंदगी बदल सकती है।

0: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिम जिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
1: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
1: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
0: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के

0: स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर, 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू, राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
8: ये विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
9: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
8: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए OTP सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
7: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
7: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि इस बार उन्हें बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।

0: बांकीपुर विधानसभा की जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कराऊंगी।
1: गौरतलब है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद ने रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें 46,000 से अधिक मत मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रही थीं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एनडीए की ओर से भी इस सीट पर जल्द ही उम्मीदवार के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए का किसी भी दल से मुकाबला नहीं है।
2: लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ही आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी, और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव।
1: इधर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बांकीपुर सीट पर एनडीए उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी।
3: बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वो सीट खाली हुई है और उस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहले से ज्यादा वोट से जीतेगा। वोट में हम आगे रहेंगे, आरजेडी कांग्रेस और चाहे प्रशांत किशोर लड़ें।
1: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पटना में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में डॉक्टर अनिल कुमार को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान तेज करने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपये कर वसूली के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला में उन्होंने बिहार जैसे राज्यों के लिए इस व्यवस्था में शिथिलता बरतने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भी इस व्यवस्था पर असहमति जताई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आम लोगों पर इसका आर्थिक बोझ न्यूनतम रहे।
4: पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपए की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधे एक एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूंकि हम लोग इस ओएसआर को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत आय के स्रोत डेवलप हो उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं, तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज की भी मांग की गई है।
1: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
5: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए नगद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट।
6: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होने वाले उच्च मूल्य के नकद लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। अब 5,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी करने पर केवल बायोमेट्रिक सत्यापन पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली में सुरक्षा को मजबूत करना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना है। समाचार कक्ष से

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले चार दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटे के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देने वाला राष्ट्रनायक बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखू भाई दल सानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही करने का आदेश जारी किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भेड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बिहियापीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के पहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत वरगांव में पुलिस टीम को बंधक बनाए जाने के मामले में 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 54 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-327 पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शिवहर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के नया टोला में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 3 महिला समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज पुलिस ने विशनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और 1 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। SSP 21वीं वाहिनी बगा का 24वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैमूर जिले के सभी 151 पैक्सों में आज आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में समितियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा जोखा पेश किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: ठक ठक
3: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम।
6: सुनो दिल से।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। तू जो
6: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
11: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
12: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
13: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JG शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JG शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
8: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
9: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है।

संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45

0: मिनट से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554 94 53
1: और 90 97 61 60 02।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम आमंत्रित कर रहा है प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक पद के लिए आवेदन। भारतीय नागरिक तय फॉर्मेट में अपने आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। जरूरी योग्यता, अनुभव, आयु आदि की समुचित जानकारी के लिए देखिए लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम की वेबसाइट www.lgbrimh.gov.in। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर्तव्य भवन नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है सदस्य कानूनी के पद को भरने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन। विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इन वेबसाइट्स पर mopng.gov.in तथा pngrb.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अंसारी नगर नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए आवेदन। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.aims.edu। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर की वेबसाइट nitrr.ac.in। वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक कीजिए advertisement.php को और वहां तमाम जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सिविल इंजीनियर अनुबंधात्मक, आंतरिक लेखा परीक्षक अनुबंधात्मक, रखरखाव अभियंता विद्युत अनुबंधात्मक, विजिटिंग कंसल्टेंट विशेषज्ञ डॉक्टर तथा विशेषज्ञ विजिटिंग कंसल्टेंट मनोविज्ञानी सलाहकार। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट nipper.hajipur.ac.in। अखिल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन चिकित्सा अधीक्षक अधीक्षण अभियंता रजिस्ट्रार सहायक परीक्षा नियंत्रक प्रशासनिक अधिकारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी तथा लाइब्रेरियन ग्रेड वन। पूरी जानकारी के लिए देखिए एम्स मंगलागिरी की वेबसाइट www.aimsmangalagiri.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
17: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: स्वर्ण पदक जीता। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
5: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
6: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
7: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
8: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
9: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
16: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
15: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
16: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
15: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
15: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
16: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
16: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
21: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
21: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
21: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
22: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
22: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
24: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की हो गई मौत, डीएम ने की कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक, जिले के प्रभारी मंत्री का हो रहा है आगमन और सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे एक 23 वर्षीय युवक की दौड़ लगाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बसडीला नौका टोला निवासी 23 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है। ये जयप्रकाश सिंह कुशवाहा के पुत्र थे और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रंजीत कुमार तेलंगानी मैदान में सुबह दौड़ का अभ्यास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 3 राउंड दौड़ पूरी करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, वह जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों ने और स्थानीय लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों का निरीक्षण किया और कई विभागों के साथ बैठक भी की। बताया जा रहा है कि डीएम ने बलथरी चेक पोस्ट का भी औचक निरीक्षण किया, वहां संचालित व्यवस्थाओं और जांच कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच, सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की उन्होंने समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। राज्य की सीमा पर आने वाले सभी वाहन के निर्धारित मानकों के अनुसार सघन जांच सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, शराब तस्करी एवं नियमों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मी पूरी सतर्कता और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करें। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी आवश्यक दवाएं एवं जांच सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान जर्जर हो चुके पुराने इमरजेंसी वार्ड भवन का भी निरीक्षण कर उसे शीघ्र ध्वस्त यानी तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का उन्होंने निर्देश दिया। इधर जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने मॉडल सदर अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी ओपीडी, एक्सरे कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, प्रसव वार्ड, सिविल सर्जन कार्यालय सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण कर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था और अन्य सेवाओं का भी बारीकी से अनुसंधान कर आवश्यक निर्देश दिया। जिले के प्रभारी मंत्री और सूबे के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का गोपालगंज में दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वे सेमराव में आयोजित पंचायत सहयोग शिविर में शामिल

स्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत आम नागरिकों के गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया जा रहा है। इसी क्रम में विजयपुर थाना में भी गुम हुए एक मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी पूनम देवी पति अरविंद कुशवाहा साकिन नैनापार थाना विजयपुर को सुपुर्द किया गया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के बंगाल खाड़ पंचायत भवन परिसर में नालसा के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम, स्थायी लोक अदालत का गठन इत्यादि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हैदर अली और PLV हीरा लाल राम की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को आवश्यक विधिक जानकारियां दी। पुलिस अधीक्षक ने आज अपने कार्यालय में जन सुनवाई की, कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ मामलों का संबंधित अधिकारियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्य दिवस के समय जन सुनवाई की जा रही है। इस दौरान भारी संख्या में फरियादी पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए पुलिस अधीक्षक भी आवश्यक निर्णय ले रहे हैं। अब गोपालगंज से बेतिया मार्ग में सफर करना महंगा पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार राज्य मार्गों और चयनित पुलों पर टोल व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस पुल से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा। टोल टैक्स के रूप में फिलहाल अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही टोल व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हथुआ पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए हथुआ क्षेत्र के मछागर जगदीशपुर में ग्रामीणों की सूचना पर 103 लीटर देशी शराब बरामद किया। साथ ही शराब को जब्त करने के बाद पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और दो विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद मैनुद्दीन, जो मोहम्मद राजू का पुत्र है और रामपुर हाजी गाँव का निवासी है, थाना मनिहारी जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और दो विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। इस मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी 9 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी जय प्रकाश मुखिया पिता चंद्रिका मुखिया साकिन शिवराजपुर थाना नौतन जिला पश्चिमी चंपारण का निवासी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि लगातार अभियान चलाते हुए जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलपुर पुल के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात करते हुए कई मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए कई दर्जन फरियादियों के मामलों को सुलझाया गया। उचका गाँव थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही पिता सहित कई लोगों पर मारपीट किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी की पत्नी पिंकी कुमारी ने पुलिस अधीक्षक को आज आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति अर्जुन कुमार, जो लोहसी थाना उचका गांव के निवासी हैं, उनके पति का पिछले 6 महीनों से किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बना हुआ है। इसको लेकर लगातार वे घर की संपत्ति और बहुत सारे कीमती सामान उस महिला को दे रहे हैं। साथ ही पूछने पर पत्नी के साथ मारपीट की जा रही है। इस मामले में पत्नी के आवेदन पर अब पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना को निर्देश देते हुए मामले में जांच पड़ताल करने का आदेश दिया है। महिला थाना अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की हो गई मौत। DM ने की कई विभागों के

0: साथ समीक्षा बैठक, जिले के प्रभारी मंत्री का हो रहा है आगमन और सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6-575।
6: कब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। समय 9:27 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते ही हैं कि पुराने गाने के फरमाइशों को पूरा किया जाता है, तो आप लोग पुराने गाने के ही फरमाइश करेंगे ताकि आपकी फरमाइश भी पूरी हो। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, प्लीज़ मेरे सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं सोनी, आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते सोनू सर, रंजन कुमार पंजाब से जुड़े हैं और हमारा भी फरमाइश है माँ तुझे सलाम मूवी से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना। बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, बिल्कुल बने रहा हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहा हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कमलेश जी आज सबर करेंगे और आपकी केवल हाजिरी बनेगी आज। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कार्यक्रम से हम जुड़ गए हैं लेकिन हमें भी आज एक गाने का फरमाइश है सोनू भाई, और गाने का बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्कार सर जी, मिस्टर साहिद अफरीदी विलेज गोपालगंज से और सॉन्ग नेम एकाश कैसी दीवाने को हमसे मोहब्बत हो जाए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल हम अनु दुबे की आवाज़ में गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस गाने के फरमाइश उन्हीं की पड़ोसन सोनी सरेवार नंबर 1 गोपालगंज से ही। तो आपके फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

रेडियो रेम झीम 94.4 FM पे इस प्यारे से दर्द भरे गीत को सुन रहे थे हम सभी अनु दुबे जी की आवाज़ में, और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और ध्यान रखना है कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी देनी है। और यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं रंजन कुमार जी, पंजाब से जुड़े हुए हैं, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है माँ तुझे सलाम मूवी से, मैंने तुझको दिल दे दिया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज है, कुछ देख ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है। शुक्रिया शुक्रिया, दर्द जो तुमने दिया हो अभी तक याद ही रखे हैं क्या जी, अब तो भूल जाए। खैर, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा और साथ भी देने का। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर आज प्लीज़ सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है, और इस मैसेज को पहुंचाते हैं संदीप जी। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है, और आज हमको भी गाना सुनना है, सुना दीजिए। गाने की बोले मत कर इतना गुरूर सूरत पे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं शानिया शफी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओहो, तो चलिए आपकी मैसेज हम शामिल करेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश माँ तुझे सलाम मम्मी से, मैंने तुझको दिल दे दिया।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछेम 94.4 एफएम पे सो एसएमएस फरमाइश में। और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए हैं और आगे भी गाने की फरमाइश पहुंची है तो आगे भी गाने सुने जाएंगे। यहाँ पे एक हमारे श्रोतागढ़ कह रहे हैं कि हम 2 नंबर पर थे, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले हैं मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने की फरमाइश करते हैं मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे कुछ मैसेज है, मैसेज में लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। और तुझको मैंने दिल दे दिया, नाइस सॉन्ग, रोशनी कुमारी मानिकपुर से मैसेज करती हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मैसेज देख कर इग्नोर कर दें रहे हैं सोनो भाई, ऐसी बात नहीं है महबूब जी, आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है, बस शामिल नहीं किए, हम समझें आपके मैसेज को और आपकी फरमाइश, तो आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र कर ले। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भैया मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सबकी फरमाइश एक करके पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, एक के बाद एक ही गाने हम सुना पाएंगे, अब एक बार में 2 गाने तो सुना पाएंगे ही नहीं, तो थोड़ा सा सब्र करते हैं आप लोग। तो हम आपकी फरमाइश बारी बारी से जितना समय मिला है उतना मैं जितना हो सकेगा उतना हम सुनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गाने प्ले करते हैं मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, और सुनते हैं

रेडियो एम जी 94 FM सुन रहे हैं, काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो आगे भी मैसेज हम शामिल करेंगे और अगली गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। और ये गाने थोड़े लंबे हैं और हमें लगता है कि अभी 2-3 मिनट है गाने, तो इस गाने को रुकते हैं, अगले गाने भी हम प्ले करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं हमारे श्रोतागण महबूब आलम जी केरला से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। और लिखते हैं कि कर न सके हम प्यार का सौदा, किम्मत ही कुछ ऐसी थी। जल्दी से प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनू सर, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एम छम सुनने के लिए और आगे भी बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और तो एक एक करके सबकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल गाने प्ले करते हैं महबूब जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छम 94.4 FM पे।

94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे बढ़े थे, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, और मैसेज करती है रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि चिड़िया खन की खनकाने वाले आ गए। सुरेश जी त्रिबिरवा से मैसेज करते हैं, तो स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाने प्ले करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और इस मैसेज को करते हैं महमूद जी, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करते हैं तो गाने की फरमाइश पूरा करने की कोशिश हम तो करते ही हैं, आप ही लोग के लिए तो हम बैठे हुए हैं, और जो भी कार्यक्रम चलता है आप लोग के लिए ही चलता है। रेडियो रमझम के माध्यम से जो कार्यक्रम चलता है सब आप सभी के मनोरंजन और खुशी के लिए ही चलता है, और उसमें कुछ शर्तें भी रखी जाती है हम लोग के तरफ से, और यह कार्यक्रम अलग अलग बनाए गए हैं समय समय के अनुसार, तो जिससे कार्यक्रम चले वैसे कार्यक्रम के साथ जुड़ना है और एंजॉय करना है, मनोरंजन करना है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे यहाँ पर, और अगले गाने की फरमाइश करते हैं प्ले। गाने की फरमाइश करती हैं शानिया शफी, और गाने का बोल देती हैं मत कर इतना गुरूर सूरत पे है हंसी, और बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे यहाँ पे। आगे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं, लिखा गया है कि नमस्कार नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और मैसेज करते हैं राघव जी। और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं क्योंकि समय भी बहुत कम है, और गाने भी सुनने हैं, कई मैसेज हैं हमारे श्रोतागढ़ की।

94.4 FM सुनने आप सब, और काफ़ी प्यारा संग सुनने थे हम सभी, और इस गाने के साथ इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लगता है कि कह रहे हैं कि सर मुझे लगता है कि आज भी मेरा संग प्ले नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको भी समझने की ज़रूरत है। चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सीधा गाने के फरमाइश करिएगा, और भोजपुरी गाने के फरमाइश करना चाहते हैं तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि वाओ नाइस सॉन्ग, और मैसेज करती है रोशनी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आँखों की बेनूरी अच्छी नहीं होती, दोस्तों की दूरी अच्छी नहीं होती, कभी कभी मिल भी लिया करो यार, हर समय एसएमएस से मस्ती पूरी नहीं होती। और इस मैसेज को करते हैं राघव जी, काफ़ी अच्छी लाइनें हैं, और बिल्कुल कभी कभी मिलना भी ज़रूरी होता है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और जो भी मैसेज हमारे पास हैं और जिनकी फरमाइश पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो गया है, तो कल बाकी बचे लोगों की शौक की पूरी करने की कोशिश रहेगा। और हाँ, आप लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग जब भी गाने का फरमाइश करेंगे तो पुराने गाने का फरमाइश करेंगे, वरना हम गाने को रोकें और उसके बाद से आप ना कहेंगे कि हमारे गाने लगता है कि आज भी नहीं पूरा होगा और हमारा गाना या मैसेज इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी बात ही नहीं रखनी है, बस आप पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें और आपकी फरमाइश हम बिल्कुल पूरा करेंगे। फिलहाल अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, और अंतिम गाने भोजपुरी ही हैं, और गाने का बोल देते हैं तो दीवानी हो ता आजा। और इस मैसेज को करते हैं संदीप प्रजापति जी, और काफ़ी पहले मैसेज किए हुए थे और इनकी गाने को देखते हुए हमने रोक के रखा था, फिर ये मैसेज किए कि लगता है कि आज भी नहीं बजेगा, तो आज तो बजा दे रहे हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। और हम बता दें कि यहाँ पे एक हमारे पास श्रोतागण हैं जो इस कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं, और उनके तरफ से भोजपुरी गाने पे रोक लगाने के लिए भी इस कार्यक्रम में सुझाव पहुँच चुके हैं, तो अगले सप्ताह इस पे हमारे डायरेक्टर सर प्रतिक्रिया भी देंगे और देखा

जाता है, अब अगले सप्ताह से गाने शामिल करने का मौका मिलता है कि नहीं, अब अगले सप्ताह का इंतज़ार है। तो फिलहाल आप लोग ऐसा करें कि जब भी गाने के फरमाइश करें, भोजपुरी ही सुनना चाहते हैं तो कुछ अच्छे अच्छे पुराने गाने के फरमाइश करें जो अच्छे लगे, किसी को बुरा ना लगे, चलता रहे कार्यक्रम में मिला जुला कर। तो सब आप लोगों के हाथों में, कार्यक्रम में कौन से गाने चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, किस पे रुक लगेंगे, ये सब आप लोग अपने विचार से सोचें और कुछ ऐसे गाने की फरमाइश करें कि कोई भी कार्यक्रम में कोई गाने पे रुक ना लगे। तो फिलहाल हम गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका है। और आप सब सुनते रहें रेडियो रमछिम 90.4 FM, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। मिलते हैं फिर अगले दिन, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: The Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar, former Lok Sabha Speaker Meera Kumar, Minister of State B.L. Verma, Members of Parliament, senior officials and other dignitaries paid floral tributes. In Jharkhand, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: मुकेश, मुकेश, ओ मुकेश ड्राइवर।
3: क्या मैडम, आप भी जो है ना नींद से जगा देती हैं।
2: उठो, हमें अभी पार्टी में जानी है पटना, गाड़ी निकालो जल्दी।
3: अरे आप मुझे नौकरी पर रखी है कि हमेशा के लिए नौकर बना रखी है?
2: ओ शट अप नॉनसेंस, जल्दी गाड़ी निकालो।
3: ए मैडम, अपनी भैया की इज्जत है।
2: वो मुझे पता है कितनी इज्जत है, जल्दी गाड़ी निकालो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: ए शंभु बाबा, अरे आजकल के सिचुएशन देखो तनी, हई आंगनबाड़ी में बड़ा कुछ पोषाहार बांटा था लेकिन मैं खा जाता रही सब।
1: ओए बबुआ, गवा गाई आंगनबाड़ी स्कूल खुल गई बा, में खिचड़ी बनता।
0: हाँ।
1: लेमन चूस मिलता।
0: लेमन चूस?
1: हाँ।
0: अरे बाप रे, कोई चूसनी है कि ना?
1: नाए बबुआ, हम जाइले तो कहला से ए बाबा ई लड़का सके बताई।
0: अच्छा रहुआ के ना
1: तहरा ना भेटा,
0: बुढ़ारी में खाए तो नस बैठ जाए। आए हाय हाय आहा, अरे बड़ा गजन होता है।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ringing, bajti hai to kehte hain hello.
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-11 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: नमस्ते मैडम जी।
4: नमस्ते।
5: भारती जी बोल रही ना आप। आपका नहीं मैं सोता हूँ, मैं गोपाल जगराम का पास जिला गुना से बोल रहा हूँ मैडम।
4: कैसे हैं आप।
5: बढ़िया है मैडम जी, अभी तो बारिश हो रही है।
4: अच्छा जी, आपकी तरफ बारिश हो रही है, कभी हमारे तरफ भी भेजिए।
5: आपके उधर नहीं हुई क्या बिहार में बारिश।
4: नहीं हुआ था परसों, उसके बाद कहाँ हुआ,
5: कल हुई थी हमारे उधर।
4: इधर और भी मौसम गर्म हो गया है।
5: यहाँ तो अभी ठंडी है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है थोड़ी सी।
4: ये तो बढ़िया है।
5: कैसी हो आप।
4: हम तो ठीक है
5: जी। गाना सुनना है
4: बता दीजिए।
5: सुपर उत्तम फिल्म का सुनना है, कुमार सानू का एक निकी आवाज में गाना। गाने के बोल बताऊं, चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है, ये वाला गाना है।
4: ओके। और सॉन्ग किसी
5: डेडिकेट है ना जी। हमारे ज्योति साहू जी है, मकसूद अनवर का सुनील साहू जी है, मंगीलाल चंदेल जी है, इनके लिए और डेडिकेट और आपके लिए भी है मैडम।
4: ओके
5: पहले कर दीजिए।
4: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4
5: जी।

0: बता दी पहले
1: नाम परमात्मा मत काला मठिये से
0: चल
1: बाजकल ठीक
0: बाहू
1: कैसे अभी गोपाल
0: तो बाबे कबो धूप होता कबो छाँव होता है ऐसे ही आवत जाता होता
1: सही तो बोलिए पासा होता कबो छाया होता कबो धूप होता बारिश और तो भाई बारिश होते नहीं सही जाता
0: गर्मी भी तो ऐसे ही बा
1: गर्मी बहुत पैंतीस चालीस रहता है आज अपने अपने पसंद के
0: अच्छा तो अपना
1: अपने पसंद के बजाई
0: बुझाई का है ना बताए तब
1: ना पानी खराब गाना बात गाना बाजबे करता
0: ना ऐसा कोनो बात नहीं है अब
1: ना तो कोनो बात नहीं है तो रवे बजा दे रवे बजा तीन बार से तो रवे अपने पसंद के बजाओ आज भी अपने पसंद के बजा दे
0: ना आज रवे बता दे
1: सावन के महीने में बोलने में गाना खूब बढ़िया बजा रहे थे बोल बम के गाना बढ़िया सावन के सावन के महीने चलते
0: पूरी में हिंदी में
1: भोजपुरी में
0: और गाना के सुनाई को करे
1: गाना सही सब लोग बेटिया से बारे लेके देना है इतना भगत सिंह और बहुत लोग वीरेंद्र वीरेंद्र पर लेके देना सब अपने मुजफ्फरपुर के हम सुनने लाई जाए रेडियो में कॉल नहीं बहुत लोग भाई के सुनने वाला
0: चलिए तब ठीक बात गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4।

0: प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजी 90.4 FM में।
2: हेलो दी,
1: नमस्ते।
2: राधे राधे।
1: राधे राधे।
2: और कैसी हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: बिल्कुल मस्त हूँ। और आप बताएं आपकी नाम क्या है?
1: मेरा नाम भारती है। और आपका?
2: जी मेरा नाम है रानी।
1: और कहाँ से हैं आप?
2: जी मैं हरखुआ से बात कर रही हूँ आप। और आपकी मैं आवाज बड़ी दिनों से सुन रही थी, बाकी नाम में कंफ्यूजन थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपसे बात करूँ वगैरह। मैं सोची कि आज मैं हर हाल में आपसे बात जरूर करूंगी, और आवाज सुनकर तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा था। सोच रही थी कब आपसे बात हो जाओगी, मुझे थोड़ी सी टाइम दिक्कत था, तो मैं फाइनली आ जाऊँ। और नाम में मैं बहुत कंफ्यूजन थी, मैं सोच रही थी आपकी भारती नाम है कि आरती नाम है, वही मैंने सोचा आज मैं दोनों क्लियर करूंगी आपसे बात करके। मैंने एक सुना था, एक लिसनर पूछ रहे थे आपसे, बात किए थे, तो मैंने कंफ्यूजन थी कि फिर दी का नाम भारती है कि आरती है। तो मैंने सोचा दिव्या दी से तो बात है, सनी दी से बात हुआ है, बहुत पहले बात हुआ है, अभी मैं बहुत कम बात करती हूँ, मैं बहुत पुरानी लिसनर हूँ आप लोग का चैनल का, मैं बात नहीं करती हूँ। अगर आपकी आवाज सुनी थी तो मुझे अंदर से खोता है ना कि कोई की बात अंदर से होता है, काश मेरे से बात भी हो जाता मेरा खुशी ऐसा तो आपको पता चलता होगा। आपकी आवाज बहुत प्यारी है दी, और उससे ज्यादा आपकी नाम बहुत अच्छी है।
1: अच्छा
2: जी जी। और बताए आपने नाश्ता वास्ता किया है कि नहीं?
1: हाँ हमने नाश्ता कर लिया। और आपने?
2: जी जी हमारा तो भी हो गया है, और मौसम थोड़ा सा दुष्काम कर रहा है, बारिश एक दिन पूरा जम के हुआ था जी, और काफी गर्मी से परेशान थे लोग, तो थोड़ा बहुत राहत मिला है, लगी फिर वही हाल है,
1: लेकिन थोड़ा बहुत मतलब धूप कभी हो रहा है कभी ना हो रहा है, तो उससे थोड़ा राहत मिल रहा है।
2: वही है दोनों मिला मिला के।
1: तो घर परिवार में सब कैसे हैं?
2: घर परिवार में सब कोई अच्छा है, और मैं दिक्कत की बात करूँ तो थोड़ा मेरे माँ की तबीयत खराब है, तो इसीलिए आप लोग सुनती थी बाकी मैं जुड़ती थी नहीं। और जी और मेरी माँ के थोड़ी भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनकी डॉक्टर बोला है ऑपरेशन करने को, तो हम लोग काफी दिन से परेशान है दी, तो अभी तो हुआ नहीं है, उनकी दवा चल रहा है, और थोड़ा सा कमजोर भी है, तो थोड़ा तो रिक्सी वाला कार रहे दी,
1: तो ख्याल रखिएगा माँ का आपने।
2: हाँ और हाँ माँ तो इटली में है और हम लोग घर पे है, और मैं बड़ी हूँ तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। फिलहाल मैं थी नहीं माँ के पास, लेकिन मुझे यहाँ भेज दिया लोग, और
1: अभी ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है, और अभी आप लोग के दुआ की जरूरी है कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी, और उनकी तो जो डॉक्टर बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो देखिए अब नहीं मिल रहा है लोग, और मैं इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा था, बाकी आपकी मैं हमेशा से सुनती थी, लेकिन मैं सोचा आज तो थोड़ा सा टाइम आप लोग के लिए निकालूंगी आपसे बात करने के लिए।
1: चलिए ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
2: और जी मुझे सॉन्ग सुना है मेरी माई के ऊपर है, एक लाडला मूवी के अनिल कपूर जी का, तो वही सॉन्ग, उसमें एक सॉन्ग है तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के, जी मुझे
1: सॉन्ग माँ को ही डेडिकेट है ना,
2: और मेरी माँ के लिए और आपके लिए और सोहेब के लिए और दिव्या जी के लिए और बाकी जितने रेडियो की मेरी रेडियो दोस्त है उन सभी को रानी की तरफ से है, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा दी, और अपने बीच बीच में पानी पीते रहिए, आपकी बात बड़ी सीख है।
1: जी मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है।
2: जी जी, तो ये गाना उन्हीं के लिए बजाइए, और थोड़ी सी आप लोग को दुआ चाहिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए, हम लोग तो काफी दिन
1: करना है कि माँ आपकी बहुत जल्द ठीक हो जाए।
2: जी जी जी, मुझे यही चाहिए, और मैं काफी दिन से माँ के रिलेटिव से हम लोग परेशान है, पूरा फैमिली परेशान है दी, और अभी उनकी इलाज हो रहा है, उनकी जो मेन काम है दी वो भी बाकी है, जो उनको ऑपरेशन करना है, थोड़ा उनकी देखिए जब बात माँ कहता है हम लोग अंदर मैं उस टाइम से हंस कर बात की आपको टाटा को, बाकी थोड़ी सी माँ की बात आता है तो पानी टूट जाता है दी।
1: माँ तो माँ होती है ना।
2: हाँ जी जी, और वो अल्लाह जाता, और देखिए घर में सब कोई है यहाँ पर, बाकी नहीं लग रहा है कि घर कोई है, हम लोग इस रूम में से उस रूम में इस रूम से, और थोड़ा बहुत आप लोग को सुनते हैं तो थोड़ा सा मन हल्का होता है दी, और ना तो थोड़ा सा तो मियाँ थोड़ा टेंशन हो ही जाता है,
1: तभी आपके साथ है।
2: जी जी, और इतने साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया आपको, और आप बहुत अच्छी हैं, बात तो बात करती हैं सभी लिसनर से, तो अच्छा लगता है।
1: जी जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: थोड़ा धूप गर्मी वगैरह सब हो रही है ना, थोड़ा तबीयत खराब हो गया मैम।
1: अच्छा जी, क्या हो गया है?
0: थोड़ा बदन वगैरह सब दर्द कर रहा है, धूप हो जाता है कभी, बहुत गर्मी लगती है, थोड़ी बारिश होती है इसी वजह से।
1: तो धूप से थोड़ा बच के रहिए। और
0: धूप से कैसे बचा जाए मैम? ड्यूटी पर जाना पड़ता है, धूप के टाइम छुट्टी होती है 3 बजे, धूप में ही निकलना पड़ता है, विद्यालय बंद हो जाती है ना।
1: तो थोड़ा कुछ गमछी वगैरह ओढ़ के जाइए आइए।
0: वो तो रहता है, टॉवेल रहता है, गमछी वगैरह रहता है साथ में, थर्मस वगैरह तो रहता ही है साथ में।
1: कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगा।
0: जी, ऐसे कोई विशेष ये नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऐसी तबीयत खराब है। आज सुना दीजिए मैम, आया सावन झूम के का गाना, टाइटल सॉन्ग।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी, सबसे पहले हम आपको, आपके रेडियो रिमझिम के पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिमझिम के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका?
6: अच्छा है, अपना बताइए कैसा है?
5: हमारा भी ठीक है,
6: पूजा का काम है। आपको अच्छा रहे तो हम लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है।
5: हेलो। हाँ बोलिए।
6: बोलते हैं आप अच्छा रहेंगे, ख्याल रहेंगे तब तो हमारा रिकॉर्डिंग चलेगा।
5: जी जी, हम तो अच्छे ही रहते हैं, भगवान की कृपा है जो अच्छे रहते हैं, और आप लोगों की भी कृपा है।
6: नाश्ता हो गया?
5: हाँ हाँ, नाश्ता हो गया। और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: गाना सुना दीजिए मोहब्बत फिल्म का।
5: जी हाँ बोलिए।
6: बोला है मोहब्बत फिल्म का गाना सुना दीजिए।
5: और गाना कौन सा है?
6: गाना है आके गले से लगा लो।
5: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
6: जी, आपको जितना रेडियो रिमझिम आप जो सब सुनता है और दोस्त सब सुनते हैं सबके साथ।
5: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: जी मैडम जी, नमस्ते।

0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल?
0: तो हाल चाल तो अच्छा है, आजकल जुम्मे का काम सब चल रहा है, उसी में लगे हैं कि एक गाना का रिक्वेस्ट कर लें।
1: तो बता दीजिए।
0: वो गाना है लता मंगेशकर का, जाना जाना है कहीं दूर चले जाना है, ऐसा गाना है। सिंगल लता मंगेशकर का गाना है
1: जी।
0: जाना जाना है कहीं दूर जाना है, ऐसा ही गाना है। तो उसी गानों को हम सुनना चाहते हैं ना। अगली बार तो अच्छा आइए, आप जो सोनी जी प्रोग्राम देती हैं 1 बजे से, वो आप नहीं दे सकते हैं क्या?
1: आज तो बैठना है।
0: आज बैठना है तो उसका नंबर मालूम है, क्योंकि हम सोच रहे हैं तो उसका नंबर लगाया जाए।
1: उसका नंबर तो मुझे नहीं मालूम है, सोनी जी से पूछना पड़ेगा।
0: अच्छा तो छोड़िए तुम, क्योंकि नंबर हम अच्छा देखेंगे। 1 बजे से आप बैठिएगा ना, तो आज सुनेंगे आपका खास कर प्रोग्राम। तो उसका रिहर्सल कर लिए?
1: नहीं, अब वो देखेंगे कैसे बोल रही है, उन्हीं से सीखेंगे।
0: सीखिए, उसमें भी आप आजमाइश कीजिए, क्योंकि ये तो प्रोग्राम चलाना तो आपको इजी हो गया है
1: जी।
0: तो ऐसा ऐसा प्रोग्राम आप डेवलप करते रहिए। तो उसमें हम भी चाहते हैं कि आप भी कभी आए 1 बजे वाले में,
1: है ना? बिल्कुल आएंगे।
0: तो क्या बोलता है वो, हेलो योर वॉइस योर चॉइस। तो उसी को हम आपका प्रोग्राम से सुनना चाहते हैं, आप इतने दिनों से हैं इसके लिए। आज सुनेंगे गौर करके, तो ये गाना में तो सुनाइएगा।
1: बिल्कुल सुना।
0: वो तो सोनी जी पानी पीपी के वो अपना प्रोग्राम देती हैं वो।
1: इतना बोलना ही पड़ता है कि प्यास लग जाएगा।
0: हाँ प्यास लग जाता है, भूख लग जाएगा। और कुछ रही थी, आप पानी पिए मैडम? पानी पी लीजिए, खाना खाई है, भूख तो लगा है पर अभी नहीं खाए, खा लेंगे प्रोग्राम की बात। इसी इतना मजा आता है सुनने में उनका, सोनी जी का और चुटिला जो आवाज होता है ना, है ना, तो सुनने में बड़ी मजा लगता है। खासकर सोनी जी का आवाज सुनने में मजा लगता है। गाना वाला छोड़िए बाद में जाए, है ना,
1: एकदम पूरे स्पीड में बोलती है,
0: बॉडी स्पीड में, मतलब उसका स्पीड का सब कोई कायल हो गया। उसमें भी गाना जो है साथ में गाती है ना, है ना, गुनगुनाती रहती है, वो भी अच्छा लगता है। आप भी वैसा प्रोग्राम दीजिए मैडम, हम लोग को भी अच्छा लगे, है ना, और ऊपर वाला चाहे तो वैसा ही कीजिए। ठीक है मैडम, तो
1: ठीक है फिर गाना प्ले कर रहे हैं
0: जी, सुनाइए गाना को।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार मैडम।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
7: हम रमान गुप्ता पेनुला खास से बोल रहे हैं।
6: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
7: हाल चाल बल्लेवाही कराओ चल, या लेवाही कराओ चल, या खेत में बांधिए रोपनी होता।
6: अच्छा,
7: घाम बड़ा उगल बा, घाम बड़ा उगल बा, रोपनी होता सरकार।
6: घाम तो उगले ही बाबे,
7: घाम तो भर बा की एकदम घाम, उन्हें रोपनी कराओ चल। शाम आदमी है जा पीठ जड़ जाए, बाकी धान ना जड़े के चाहिए।
6: तो पानी तो
7: पानी चला के लेवाही होता, बस धान रोपवाओ तनी से। गीत सुने को सरकार
6: बता दी, कौन सा गीत सुने के बाद?
7: गुलाम अली के कोई दर्द भरा गजल, गुलाम अली का कोई दर्द भरा गजल।
6: गजल आप नहीं बताइएगा कौन सा, मतलब गजल
7: कोई गुलाम अली का कोई गजल हो, गुलाम अली का कोई गजल हो सुनवाइएगा, कोई गजल गुलाम अली का।
6: और गजल किसी को सुनाना भी है?
7: सुनवाएंगे शाहबू चक्कर वाले और गुरु चक्कर वाले। सतंदर है, सतंदर हमारे गांव का सतंदर नाती है, ओकरा के सुनाए भाम।
6: चलिए ठीक है,
7: नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार,
6: गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ।
7: नमस्कार नमस्कार,
6: 90.4 नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार।
0: और सब?
1: और सब बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: बस चाय पी रहे थे, टाइम हो गया। तो
1: इतनी गर्मी में चाय?
0: तो अब लीजिए, काम करते हैं तो चाय तो दो टाइम चाहिए ही।
1: नहीं मतलब गर्मी है इसलिए पूछ लिए।
0: नहीं, गर्मी में तो गर्म को काटता है। काम करने वाला आदमी चाय तो जरूर पिएगा। वो टाइम 11 बजे हो गया और 4 बजे हो गया, चाय तो चाहिए।
1: जी जी, चलिए, चाय राहत देता है थोड़ा बहुत।
0: राहत तो देता है, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं देगा लेकिन ये तो जरूर देता है।
1: हाँ, ये भी उतना तो नहीं पीना चाहिए।
0: क्या आपसे बताए, काम कर रहे हैं तो दो चाय तो चाहिए ही चाहिए।
1: हाँ, वो तो चाहिए ही।
0: अब एक बात और है कि अगर चाय पी रहे हैं तो आपसे बात भी कर तो कर लिए, 2 मिनट आराम भी तो मिल गया है कि नहीं?
1: बढ़िया है। तब तो रोज चाय पिए कीजिए।
0: हाँ, तो रोज की टाइम है ये। तो आज उसी टाइम ही क्या आया है कि आपके पास कॉल कर लिया।
1: तब तो बढ़िया। और सब ठीक है?
0: नाश्ता पानी हो गया?
1: हाँ, हमारा हो गया है।
0: बारिश वरिश बंद करा दिए?
1: नहीं, होगा बारिश अभी तो, वैसे ही कभी कभी मौसम बना रहा है, हो जाए तो अच्छा है।
0: ये किसी हाथ में है? कहने के लिए सबने कहते हैं लेकिन किसी के हाथ में है ये। चलिए फिर, तब आज एक गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
0: नील कमल सिंह का लुट गई नहीं बर्बाद हो गई।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और सोनी जी को, और जितने मेरे नाम से जानने वाले हैं सब सुन रहे हैं। गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। चलिए फिर प्ले कीजिए।
1: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: रेडियो
1: नमस्कार, कैसे हैं भारती?
0: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: भारती में बोल रही ना? आपका बढ़िया?
0: हाँ हाँ बढ़िया है।
1: आपसे इंतजार तो हम बुधवार से ही कर रहे हैं कि कब आपसे बात होगी।
0: जी
1: बुधवार से आपसे इंतजार कर रहे हैं बात करने के लिए आपसे।
0: अच्छा जी, क्या हो गया है बताइए।
1: बस उस दिन मतलब फरमाइश पूरा हो गया था, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए मैम।
0: अच्छा जी,
1: तो गाने की फरमाइश कर दे अपना गवाते हुए और एक बात बोलेंगे।
0: जी बोलिए।
1: जी मैम, और एक चीज और बहुत अच्छा लगता है कि रिपीट चलता है सुबह में, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए डायरेक्टर सर को थैंक यू बोलते हैं। बोलिएगा
0: जी। चलिए, आपको अच्छा लगता है खुशी हुई जानकर।
1: जी मैम, वक्त करना गवाते हुए गाने की फरमाइश करें।
0: बिल्कुल,
1: गाने की फरमाइश है चंदा सितारे से गाना है ना, उदित नारायण का।
0: कौन सा गाना?
1: चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारे ऐसा ही गाना है।
0: हाँ हाँ है,
1: उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा।
0: आप तो अच्छा फरमाइश करते हैं, अच्छा तो लगेगा ही।
1: नहीं, अलग अलग पहचान रहता है ना, मतलब पसंद रहता है।
0: नहीं, मैं भी सुनूंगी, देखते हैं कैसा है, सुन लेंगे हम भी। और किसी को गाना डेडिकेट भी करना है?
1: सोनी राम को, सोनू सर को, अभी सुनने वालों को, जितने भी 90s के फैन है। मैम को चलते चलते यही बता दीजिए कब बजेगा, मतलब कितने नंबर पे है?
0: अभी तो 3 नंबर पे है।
1: डेली हम सोचते हैं कि 1 नंबर पर लगेगा, लेकिन लगता ही नहीं है। 3 नंबर पर लगता है, 2 नंबर पर लगता है।
0: जी, तो 11 बजे से कुछ मिनट पहले शुरुआत कीजिएगा तो जरूर लगेगा।
1: जी मैम, इसके लिए धन्यवाद गाना बजाने के लिए, अभी बोल देते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं मायर एमपी से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे, तो इंतजार अभी खत्म हो गया मैम, फोन पे लग गया तू।
0: जी जी आपका पहला ही कॉल है।
1: जी जी जी ट्राई कर रहे थे, बाकी फोन लग गया मैम।
0: चलिए बढ़िया है, तो और सब बताइए, और सब ठीक है ना?
1: हाँ जी मैम सब ठीक है, बस आपका यहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है?
0: मौसम कभी धूप कभी छाँव वैसे ही हो रहा है।
1: जी जी जी आप सोनी मैम बात रहे हैं?
0: नहीं
1: भारती मैम। जी मैम तो आज ये कार्रवाई है,
0: बता दीजिए।
1: फिल्म बलमा और गाने का बोल है मैम ये मौसम भी गया, और सुनवाएंगे कितने रेडियो दिन दिन दो लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
0: ओके तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: तो वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: क्या कर रहे थे?
5: हेलो,
6: क्या हाल है?
5: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
6: मेरा भी ठीक है।
5: आवाज आपको बहुत स्लो आ रहा है।
6: मेरा भी ठीक है।
5: अच्छा, चलिए ठीक होना चाहिए।
6: और सब बताइए, तबीयत सही नहीं है क्या सोनी मैम जी?
5: क्या
6: तबीयत सही नहीं है क्या? आपकी आवाज़ बदली बदली सी है।
5: सोनी थोड़ी बोल रहे हैं?
6: हाँ,
5: हम भारती बोल रहे हैं।
6: क्या?
5: मेरा नाम भारती है।
6: अच्छा, भारती मैम जी। और सब बताइए, क्या तबीयत है आपका?
5: हम तो ठीक है, आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं?
6: हम लोग भी ठीक है।
5: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनिएगा?
6: हम सुनना है भरोसा कर लो तुम साथ में आएंगे।
5: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
6: सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, सोनी सर को, सुनने वाली और लिसनर।
5: ओके, नाम बता दीजिएगा अपना।
6: ओके,
5: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो जी, नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल श्रोता संग्राम रामन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब। संजय कुमार साहब बात कर रहे हैं
1: जी। जी, क्या हाल चाल है?
0: जी, मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप सुनिए, आप कैसी है? आपको रेडियो रिंगम का फोन परिवार कैसे है?
1: सब बढ़िया है, आपकी दुआ से।
0: चलिए, आपकी दुआ से हम भी ठीक है, घर परिवार भी चलता है। अब बाकी थोड़ा लुकाछिपी चल रहा है, कभी बारिश कभी गर्मी। मौसम बताइए। हमारे तरफ तो गर्मी है, लेकिन हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है।
1: यहाँ पे भी यही हाल
0: है, धूप ज्यादा है, थोड़ा कभी कभी छा जा है, कभी कभी गरम लगता है। इसी विषय को लेकर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा गर्मी वाला गाना सुन लिया है। क्या गर्मी से गर्मी गाना है की दुकान काटेगा? तो इसीलिए हम लोग एक गाना रखे है, जैसे की दोपहरी नेपाल ऐसे करके है। वो वैसे तो लेडीज के आवाज में तो हमें गाना नहीं, लेकिन इसमें कुमार खान साहब है, इसी सुना दीजिए। जेठ के दोपहरी में पाँव जली है, फिर ये पाँव जली है।
1: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना
0: भी है? मतलब सबसे तो पहले आपको रेडियो इंजन संपूर्ण परिवार को और दोस्त में हो गया सिखाना शर्मा सागर जी, महेश उत्तम कुमार जी, रामलीला सबको सुहाज, कृष्ण बघा से अर्जुन, कृष्ण बघा से रामलीला सबको सुहाज, अर्जुन कुमार कला भरपूर धाम से नरेश स्वामी, दीपक दास, उदय भान ठाकरे, जुमना साह, धनराज सबको सुहा, राम बदन राम राजेंद्र यादव भारती, संतलाल गौर हमारे नाम से जाने पाते हैं तमाम दोस्तों, विशेष करके मोहम्मद सलाद अंसारी है मधुबलिया को, विशेष करके करते हुए अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार
1: जी। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 एफएम।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते,
3: क्या हाल है?
2: बढ़िया बात, आप अपना बता दी।
3: ठीक है,
2: कुछ ना, बस रोज बात होता अभी। तो आप नाम बता दी और कहाँ से?
3: कृष्णा कुमारी, तीर्थ नारायण।
2: होता
3: बैठले बनी,
2: खाना वाना हो गई?
3: हाँ, खाना ना हो
2: गई। मौसम कैसन बा?
3: धूप तो निकल बा,
2: धूप निकल रही। बता दी कौन से गाना सुने?
3: नीलकमल सिंह की बता दी। कौन भी नीलकमल?
2: अच्छा, जैसे कि सैड सॉन्ग या फिर रोमांटिक या फिर कैसे?
3: कौन बजा थी?
2: अच्छा, और गाना कैसे सुनवाई तुम चाहते?
3: सबसे पहले रहुआ थे सोनी मैम के भैया। हाँ, सुन
2: चलिए गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: हेलो
0: जी,
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
1: क्या हाल है?
0: बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: चलिए, अच्छी की बात है। ये बताइए आपका नाम?
1: बोलिए
0: जी, आपका नाम और कहाँ से?
1: नहीं पहचान रहे क्या?
0: नहीं,
1: इतना दिन भूल जाती है, खाली है। बुधवार को कॉल नहीं किया तभी भूल जा रहे हैं आप।
0: अरे नहीं नहीं, मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
1: अच्छा
0: जी,
1: भारती कहाँ पे है?
0: भारती का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है ना।
1: अच्छा, तो आप दूसरा जाना है क्या? आपका नाम क्या?
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: मनोरमा, इसलिए तो पहचान रही, भारती का आवाज करने आवाज नहीं आ रहा है। तो छुट्टी लिए हैं क्या?
0: नहीं नहीं, इनका शो चल रहा है दूसरा।
1: नहीं तो भारती शो नहीं चला रही, सोनी जन चला रही है।
0: दोनों लोग चला रहे हैं लोग।
1: अच्छा, दोनों लोग चला रहे हैं।
0: और बढ़िया है, उधर का मौसम कैसा?
1: मौसम ऐसा ही है, बादल आ रहा है, धूप फिर हो रहा है, फिर बादल आ रहा है। ज्यादा दूर से थोड़ी हूँ, सिवान से हूँ।
0: अच्छा जी,
1: बढ़िया के पास ही है, मैंने मतलब मेरा घर बढ़िया में पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा, वैसे आप करते क्या है?
1: अपना खुद के काम करते हैं, हम लोग कुम्हार हैं, अपना ही काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन वाला।
0: बहुत बढ़िया,
1: सुनी दीदी हम लोग बहुत बढ़िया से जानती है, बहुत हम लोग से पास चार मिल जाए।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना आपको?
1: सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग याद ही नहीं आ रहा है।
2: ये गाना बजा दीजिए, चोरी चोरी वो मेरे पास आया, हिंदी सॉन्ग है।
0: और ये
2: यही सुनना,
0: और ये
2: यही सुनना
0: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
2: सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, भारती दीदी को, दिव्या मैम थी उसको, कृति मैम को, अवसर सर को, डायरेक्टर सर को, पूरा रेडियो रिमझिम को सुनवाना है।
0: जी चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone din din bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
5: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार मैम।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी मैम, मैं विजय दीवाना, कंकड़बाग, पटना से।
6: जी, क्या हाल

0: चला आपका?
1: ठीक है मैम,
0: तो
1: एक गाना सुनना था मैम
0: जी, बता दीजिए।
1: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।
0: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जी मैम, आपको और हमारे जो ग्रुप में है, राजू जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, सरोज जी हैं, मनोज जी हैं, जितेंद्र है, सभी आदमी बैठ के इंतजार कर रहे हैं आपका शो का एक घंटा। कब सुनने को मिलेगा मैम ये गाना? अभी
0: ये गाना मिलेगा आपको, कल मिलेगा सुनने के लिए।
1: अभी सुना दीजिए मैम ये गाना।
0: अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना?
1: ओ मैम,
0: तो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, उसके बाद में कल बज जाए।
1: ये कल कब मिलेगा मैम?
0: कल शाम 5 बजे।
1: कल शाम को आपका शो नहीं आएगा मैम, आ जाएगा ना?
0: जी
1: आपका शो कल आएगा मैम।
0: हाँ जी
1: जी मैम, शाम को 5 से 7 बजे तक आज सुना सकते हैं मैम?
0: जी बिल्कुल
1: जी मैम, थैंक यू,
0: वेलकम। चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: कुलदीप कुमार जंगलिया से।
1: क्या हाल चाल है कुलदीप जी?
0: ठीक है, अपना बताइए मैम।
1: मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा है?
0: ऐसे ही है मैम।
1: तब खाना वाना हो गया?
0: ना अभी खाना नहीं हुआ है, स्कूल कल उठेंगे तो खाना खाएंगे, अभी आए थे स्कूल से।
1: अच्छा जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
0: 11th में।
1: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
0: अच्छी चल रही है।
1: ओके, चलिए बढ़िया। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना आपको?
0: सुना दीजिए थी कोको को लाला।
1: अच्छा, भोजपुरी या फिर हिंदी?

0: छह साढ़े साल का।
1: अच्छा जी, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: जी मम्मी पापा को, सबसे पहले आपको
1: जी,
0: और आपको पूरा जितने रेडियो रिमझिम के उतने आदमी को।
1: अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बोले

विक्रम संवत 2083 अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि दिनांक 7 जुलाई 2026 दिन मंगलवार के सुप्रभात रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:14 पर होगा और सूर्यास्त 6:46 पर होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।